0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Chillax with Radio Musty. जी वेलकम, स्वागत है आप सभी का। 5:05 हुए हैं, ये है योर चिलैक्स शो, जहाँ पर सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हम यहीं पर होंगे आपका साथ निभाने के लिए। वैसे प्यार का साया, क्या खूबसूरत गाना। ओ वैसे ये गाने बस आपके दिल तक ये जो आवाज़ है पहुँचाना चाहते हैं कि आप प्यार ही प्यार है, ये समा बहार है, ऊपर से जो टाइम होता है बस रिलैक्स होने का, चिलैक्स होने का, जिंदगी को धीरे से स्टेप बाय स्टेप लेने का होता है। वैसे प्यार का साया आशा भोसले की आवाज़ में, और साथ में थे आपके लिए कुमार सानू की आवाज़ में। और ये जो सॉन्ग है स्पेशली आई नो कि बहुत हिट है, और ऐसे ऐसे हिट गाने हम लेकर आ रहे हैं आपके सुबह को और भी मस्त बनाने के लिए विद RM2 रेडियो मस्ती। मनीष मैं का साथ है जी सुबह के 7 बजे तक।
1: RM2 Radio Musty.

0: इस संडे का टाइम है, ऊपर से इतने प्यार प्यारी गानों के साथ हम आपकी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। 5:10 हुए हैं, तो इस तरह से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी प्यारे लिसनर्स के नाम।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: केशकर की आवाज में, भूपिंदर की आवाज में ये डुएट सॉन्ग आपके लिए फ्रॉम द मूवी मौसम। अभी के लिए बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की ओर, और मैसेजेस डेडिकेशंस तो हम बाद में लेकर आएंगे आपके लिए। अब भेजते रहिएगा 5491294 पर।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: हां जी, 5:20 हुए हैं और शुरुआत करते हुए
2: एरीज मेष राशि।
0: सीरीज वालों के लिए आज का दिन एक्शन और अचीवमेंट का है। आपके एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल सकेगी, सफलता आपके इंतजार कर रही है।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाएगी। छोटी छोटी खुशियां ही बड़े बड़े, एक्चुअली खुशियां और नतीजे हम कहना चाहते हैं, जो कोशिशें हैं बड़े बड़े नतीजे लेकर आ सकती है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेहनत ना करेंगे तो काम कैसे पूरे होंगे।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज कमाल कर सकती है, किसी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन से फायदा मिल सकता है आपको।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: अपने दिल की सुनिएगा लेकिन प्रैक्टिकल सोच भी साथ रखिए, फैमिली का सपोर्ट आपको हिम्मत देगा।
2: लियो सिंह राशि,
0: आज आपकी पर्सनालिटी लोगों को इम्प्रेस करेगी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही है।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: प्लानिंग और डिसिप्लिन आज आपको एडवांटेजेस देंगे, हर काम को स्टेप बाय स्टेप करने से आपको सक्सेस भी मिल सकती है।
2: लिब्रा तुला राशि,
0: रिलेशनशिप्स में वार्म्थ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, किसी पुरानी अंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी को है वो दूर हो जाएंगी, और आज सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने का अच्छा समय है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज डिटर्मिनेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी, अपने गोल्स पर फोकस रखिए और नेगेटिव सोच को दूर कर दीजिए।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
0: नए नए पॉसिबिलिटीज और एक्साइटिंग आइडियाज आज आपको इंस्पायर करेंगे, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चलिए।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के योग है, आपके मेहनत लोगों की नजरों में आएगी जरूर, तो आप काम करते रहो और पॉजिटिविटी ये जो है बनाए रखो।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच आज आपको अलग पहचान दिलाएगी, नए आइडियाज शेयर करने से ना हिचकिचाएं।
2: पाइसेस मीन राशि,
0: लास्टली आज हमारे पाइसेस के लिए इन पीस और पॉजिटिविटी आपको गाइड करेगी जरूर, अपने सपनों पर काम कीजिएगा और कुछ अच्छी शुरुआत करने का दिन ये मुहूर्त आज सही है।
1: Your daily horoscope RM2 Radio Musti
3: RM2 Radio Musti

0: क्या करें अगर आपको प्यार हो गया है। वैसे यहाँ पर आपके मैसेजेस जो आ गए हैं पर लेते हैं। हैप्पी संडे, आई एम प्रेमिला ऑफ पेंदी पापा, वेरी नाइस सिलेक्शन मनीष मां जी, आज हमारा बर्थडे है। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय मॉम एंड माय फ्रेंड्स, माय हस्बैंड आल्सो जो कि जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग मनीष मां एंड ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती नाइस सिलेक्शन। कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग समवन हु ऑलवेज विश वेल फॉर मी फ्रॉम चांदनी। ओके जी, यहाँ पर ज्योति ऑफ शातो बिनारस है। नेक्स्ट गाना आशनी रेखा सुरेखा एंड मधुब फैमिली एंड फॉर यू ऑल्सो हैव अ गुड मॉर्निंग। कोरा कागज था ये मन मेरा, किशोर कुमार की आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में आराधना मूवी से ले गया ये गाना हो जाए आपके।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: See, ये गाना स्पेशली फॉर आरवी। गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग।

आशा भोसले की आवाज में ये मेरा दिल प्यार का दीवाना स्पेशली फॉर दोज ट्यूनिंग टू एडम टू रेडियो मस्ती. हैप्पी संडे, कैसे हो आप? प्यार का साया मैंने बहुत इन्जॉय किया है और ये सारी जो गाने आप चला रहे हैं यादें याद रह जाती हैं अभी. तो इस तरह से आपने शमी जी का ये गाना भी इन्जॉय किया है. सरोज, मोनिका, कुशल, राजन, पूनम, दिनीश, राजन ऑफ कटुबोन की तरफ से मैसेज आया है लव सिलेक्शन. नमस्ते जी, डू एट फॉर देवानंद, बबीता, कृष्टि, नकुल एंड अर्सिया. वैसे डुएट की बात कर रहे हैं तो लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ये गाना परफेक्ट है आपके सुबह के लिए. आए होए होए, क्या बात है. नमस्ते जी, जगमणि हियर, कैन यू प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म दलपन्ना. जी हाँ, चलाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पर. गुड मॉर्निंग आकाशी तनवंसु को बॉम्बू, रिक्वेस्टिंग द नेक्स्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम मिस्टर इंडिया. मामा प्रीति के नाम, पापा क्रिस के नाम, बोथ सिस्टर्स है, उर्वशी एंड विश्नी, जीजू विनेश, क्यूट नेफ्यू है किहान, इन ऑल मनसुख फैमिली. टुमारो इज द बर्थडे ऑफ विश्नी, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. सहरा बानू और अब्दुल जो कि गुड मॉर्निंग विश कर रहे सभी लिसनर्स को.

वैसे यहाँ पर सुनील सराय जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रॉम वाइफ रीना एंड सराय परिवार ऑफ लालमा ची फ्रॉम बिलवत सन रोहन है. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड टू यू टू. वैसे स्पेशल हैप्पी बर्थडे गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू.

0: रेडियो मस्ती
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: चलिए इस खूबसूरत से मॉर्निंग में ये गाना हो जाए आपके लिए
3: इकरार हो गया
2: हाथ में गरम गरम चाय
3: सोचते ही रह गए और
2: अच्छा अपने वोकल्स को ठीक करो और इस गाने को भी गा लो

0: I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
4: RM2.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Good morning. You're listening to RM2 Radio Musti, 6 a.m. छह बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ उपस्थित है स्टूडियो में अभी उदय। आपको नमस्कार।
6: नमस्कार रमनिश्मा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। सुबह के 6 बजे की पहली फ्लैश न्यूज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। नए रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय या फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। फिलहाल इसके लिए केवल 3 से 6 पॉइंट्स ही काटे जाते हैं। संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे जाएंगे। 71 साल के मारी नुवेली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनली आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी बनाया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बेजटोंबो में लिनली आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी। जब्त की गई ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान में बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को उड़ा दिया। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। और अंत में मौसम का हाल।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: आम हालत, दक्षिण में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जबकि मास्केरेंस की दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण, पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह रहकर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:40 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:37 पर।

0: के साथ ही ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। 6:30 बजे आप प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे विस्तार के साथ। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Tu, meri zindagi hai.
3: Chillax with Radio Masti.
4: Your number one Bollywood radio station.

0: गानों के साथ आपको प्यार जरूर आएगा, आपको किसी से प्यार हुआ या ना हो, लेकिन गाने तो बस प्यार की उम्मीद जगा लेता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सेकंड आवर ऑफ कोर्स योर चिलैक्स शो, जहां पर प्यारे प्यारे गानों के साथ आपको जगाने आ जाते हैं, कभी कभार आ ही जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, आपका साथ जो आ जाता है, आपके मैसेजेस जो आ जाते हैं 5991-94 पर।
1: RM2 Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए मदहोश दिल की धड़कन चल पड़ा जाना के लिए। मुझे डेडिकेट करना चाहते मेरी बेटी री माँ जनिता शिष्टांश ने सिल्विया यूवी कृषि सिवसन फैमिली लव यू ब्यूटीफुल बेस्ट रेडियो स्टेशन ये है रेडियो मस्ती। थैंक यू जी मुकेश साधना ऑफ लालमाची फॉर लविंग नीज डॉटर ममता एंड दामाद अर्जुन।

0: fin sélectionné, fin paré pour porter à l'opinion le changement climatique. Débat Climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 13 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: बजकर 25 मिनट हुए हैं आप जुड़े हैं आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. यहाँ पर थोड़ी देर में भरेंगे पूरे समाचार बुलेटिन के साथ 6:30 बजे विद अभी उदय. तो अभी के लिए ये गाना ब्यूटीफुल सॉन्ग चल पड़ा आप सभी के लिए अली वीकर्स के लिए.

0: With Radio Masti,
1: your number one Bollywood radio station.
2: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 7 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में सबका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के

0: खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का लिया गया है निर्णय। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को और करना होगा ज्यादा तेज। आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और विदेश में ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर ढावा बोला, उड़ा दिया उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। नई रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। फिलहाल इसके लिए केवल 3 से 6 पॉइंट्स ही काटे जाते हैं। संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे गए हैं। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरह का मूल्यांकन पहली बार के लिए किया गया है। अब से हर 6 महीने में ये समीक्षा की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर अलग अलग नियमों के उल्लंघन पर काटे जाने वाले पॉइंट्स की संख्या को बदला जा सके। ज्यादा विस्तार नितुषा जिहा के साथ।
1: 10 जून से गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पकड़े गए चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकतम 10 अंक दर्ज किए जा सकते हैं। ये कदम मुख्य रूप से उन चालकों को निशाना बनाता है जो गाड़ी चलाते समय फोन हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैंड्स फ्री उपकरणों और वाहन में लगे स्क्रीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
2: Et qui s'est vu portable hands-free, est-ce qu'il s'agit d'un danger, les années se faire?
3: Les années, en effet, vous pensez. Quoi qu'il y ait meilleur, qui s'est vu avec normal, portable normal, mais me pensez, il est toujours, parce qu'il est sur la tension, il passe 100% de la route.
2: Et vous utilisez le téléphone hands-free au volant?
4: Non, je n'utilise pas du tout. On dit un manque de concentration.
1: साल की शुरुआत में लागू किए गए पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को और कड़ा किया जा रहा है।
5: Ça amendement qui pourrait en vigueur à partir du 10 juin, c'est qui concerne seulement ban ça qui peut servir téléphone handheld. Mais déjà on peut trapper téléphone là dans la main, soit on peut recevoir un message, on peut faire un message, ou bien on peut faire une call, ou bien on peut recevoir une call. Le moment que vous trappez dans la main, soit pour get message ou même pour faire un call, recevoir un call, là, il vient une offense sous section 123AE du Road Traffic Act.
1: वहीं वाहन चलाते समय टेलीफोन पर बात करने के लिए हैंड्स फ्री उपकरणों के उपयोग पर फिलहाल रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत ₹3,000 का जुर्माना निर्धारित है।
5: Tiens-moi peut servir un kit Melib, il peut conduire sur le toit ou bien un hands-free equipment, microphone, tout ça. Il peut une amende de 3000 roupies. Il est toujours une offense. Il y a une amende de 3000 roupies, mais il n'a aucun point qui monte la licence.
1: चाहे हैंड्स-फ्री कॉल हो या वाहन चलाते समय हाथ में फोन लेकर बात करना, ध्यान भटकने का हर एक सेकंड गंभीर परिणाम ला सकता है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने कम से कम यही इच्छा

0: जताई हैं। एएमबी के महानिदेशक नवीन दयापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों और खादों पर सब्सिडी देना, लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना। हमारी सहयोगी शैली नियाबन ने एएमबी के महानिदेशक नवीन नदियापाल सिंह से बात की, उनको सुनते हैं विवरण याचना मिश्रा का।
1: मंत्रालय खेतीहरों को पानी दिलाने के लिए काम कर रहा है, कर्मचारियों और खाद तथा बीज आदि के लिए सब्सिडी पर भी काम कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि बजट में खेतीहरों के लिए कई कदम प्रस्तावित हो ताकि स्थानीय पैदावार को बढ़ावा मिले। वर्तमान में देश अपनी खाद्य आवश्यकताओं का लगभग 60-70% आयात करता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महाप्रबंधक के अनुसार सरकार का लक्ष्य इस निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए मध्य अवधि में आयात के स्तर को लगभग 40% तक लाना है। SIT, रोजबेल्ट शुगर स्टेट, लैंडस्कोप आदि के जरिए कई ऐसी जमीन है जो हम खेतीहरों को प्रदान कर सकते हैं जो कई सालों से खेती करते हैं। हम 2030 तक आलू, प्याज आदि को लेकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड भंडारण क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्थानीय उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को समर्थन देने के लिए शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विस्तार की एक परियोजना प्रस्तावित की गई है। एग्रो प्रोसेसिंग के तहत हम उन खेतीहरों की पैदावार लेंगे जो अधिक मात्रा में हैं और जिनके जाया होने का खतरा है। हम सामान को प्रोसेस करेंगे। बेलरीव में हम इन सामानों को आम जनता तक सही दाम में भी पहुंचाना चाहते हैं। इन निवेशों से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से चक्रवात, सूखे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं और समस्याओं जैसी परिस्थितियों के दौरान।
0: इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज तथा एग्रो प्रोसेसिंग की परियोजनाओं के लिए सरकार को लगभग 375 मिलियन रुपए की बजट का प्रस्ताव पहले से ही भेजा जा चुका है। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस साल का विषय रखा गया है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। निर्मा नारायण रेड्डी की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
1: विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच मिलनी चाहिए। मॉरिशस में कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें कीमतों में वृद्धि और आयात पर निर्भरता शामिल हैं। न्यूट्रिशनिस्ट इतिसाम पोदो के अनुसार संतुलित आहार कई बीमारियों को रोकने में मदद करता है, जबकि स्वस्थ भोजन तक सीमित पहुँच स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वे बताते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी भी वक्त खाना पीना मिल सकता है जो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हो, पौष्टिक हो और सुरक्षित हो। 4 स्तंभ हैं। पहला है खाद्य सामानों का उपलब्ध होना, आर्थिक और वास्तविक पहुँच, उसका पौष्टिक होना, स्वच्छ होना और स्वस्थ होना, और आखिरी है खाद्य सामानों को लेकर स्थिरता बने रहना। कई नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख

0: चिंता का विषय बन गई है, विशेषकर जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण। कई लोग मानते हैं कि अपने बजट के भीतर संतुलित आहार बनाए रखना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो पाया है।
1: Moi, je pensais que mon prochain a tendance, comment dire, tous les événements sur tous les jours, tout programme, il y a aller à manger, mais que ça te dépense. Mais moi, je pensais que les mariages, pour autant que nous tous, jeunes, vieux, je te fais sport.
2: En tant que jeune, nous visons maintenir un bon équilibre côté alimentaire. Les plus affectés, ben, jeunes, parce que là, qui un stage, quand nous peut grandir,
3: mange bien, les extraits, pour autant de l'essence que les affectés, différents aspects de la vie, peut-être mental, physique ou même spirituel, alors, les biens pourtant nous guettent bien qui nous peut consommer.
4: Nowadays, pour que je suis un peu malade parce que j'ai trop mal dans le fort sud, je fais ce qu'il y a un peu d'adjinomoto, etc. Si il fait un cancer, comment se trouver dans Maurice, le number of cancer patients peut monter, etc. Et nous faisons une manière qui nous mange, je fais plus de légumes.
5: Lever le matin et prendre quelque chose, comme on dit, on mange le matin comme un roi. Pour moi, c'est pouvoir contrôler trop sucré, trop salé et aussi de faire l'exercice physique.
0: इस प्रकार खाद्य सुरक्षा देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि स्वस्थ और सस्ते भोजन तक पहुंच अभी भी कई मॉरिशनों के लिए एक बड़ी चिंता है।
6: बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है। डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में बदलाव लाया गया है। ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यानी कि ITU की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। हमारी सहयोगी जेनिल येल्लप्पा ने मंत्री अविनाश रामतोहल से बात की, विवरण याचना मिश्रा का।
7: En fait, un document qui est capable de bouger électroniquement et être reconnu, être vérifié par un système douanier.
0: जो दस्तावेजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इधर से उधर भेजी जा सकती हैं और कस्टम्स विभाग द्वारा जिनका परीक्षण किया जा सकता है, जैसे विदेश से भेजी जाने वाली दस्तावेजों को लेकर आदि, ये अनुमति देता है कि क्लियरेंस मिल पाए। ओरिजिनल दस्तावेजों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, इससे खर्च भी कम होता है। अफ्रीकी इलाके में पहली बार ऐसी पहल आगे आई है। हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट पर काम किया जो 2000 में अमल में लाया गया, लेकिन इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत थी जो हम ला पाए हैं। इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आसानी होगी।
6: इकहत्तर साल के मारी नुएली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी बनाया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। इंटरमीडिएट कोर्ट को यह तय करना है कि डेप्यूटी पोस्टमास्टर कविदेव नेव के चरित्र से जुड़े सवाल इस मामले में स्वीकार्य है या नहीं। मजिस्ट्रेट मैगाली लॉम्बिया ओंरी 10 जुलाई को अपना निर्णय सुनाएंगी। ये मामला 5 जून को फिर से आगे बढ़ा जिसमें कविदेव नेव पर गैर इरादतन हत्या यानी कि नेग्लिजेंट मैनस्लॉटर का आरोप है। ये मामला अगस्त 2020 में पुद्रदोप के पास टगबोट गाइटों के पलटने से जुड़ा है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद जहाज को समुद्र में भेजने का निर्णय हादसे का कारण बना है, जबकि बचाव पक्ष ने कुछ सवालों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है। ज्यादा विस्तार पूजा सुकालू के साथ।
8: कविदेव नेवूर पर सगाईतों टग बोट के डूबने के संबंध में लापरवाही से बिना इरादे के हत्या का आरोप लगाया गया है, जो अगस्त 2020 में पुद्रोदोग तट पर हुई थी और जिसमें चार लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सगाईतों को एमवी वाकाशियो के पुएते दिसनी में फंस जाने के बाद समुद्र तट की सफाई संबंधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उन प्रश्नों पर आपत्ति जताई जिनका मकसद ये पता लगाना था कि जब कर्मचारी उनके आदेशों से असहमत होते थे तब आरोपी किस प्रकार प्रतिक्रिया देते थे। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का मानना है कि इस पहलू को समझना दुर्घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये पहलू जरूरी है। अभियोजन के अनुसार कविदेव नेवूर ने खराब मौसम और समुद्री परिस्थितियों के बावजूद टगबोट समुद्र में ले गया, जिससे कथित तौर पर जहाज पलट गया और चालक दल के चार सदस्यों की मौत हो गई। उनका बचाव वकील नीलकंठ दल्लू कर रहे हैं, जबकि कविदेव नेवूर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।
6: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है वो अमेरिका और ईरान के बीच की कोशिशों के ईरान और अमेरिका में बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को उड़ा दिया। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो की भी जारी की है। भारत और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस समय हवाई द्वीप में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये 29वें दौर की वार्ता है और इसमें सैन्य सहयोग को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए रास्तों की तलाश की जा रही है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार सुबह यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद निवासियों को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये हमला रूस के काफी अंदर तक वार करने की कीव की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बैठक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण दिशा में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जबकि मस्कोविंस के दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्रांतों पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह कर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर खासकर पश्चिमी तथा दक्षिणी लगुनों के उस पार न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्रांतों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:40 पर जबकि सूर्यास्त 5:37 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का लिया गया है निर्णय। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत

0: 31 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दयापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, इसके लिए अपने प्रयासों को और ज्यादा करना होगा तेज। आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और विदेश में ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उड़ा दिया उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनते हैं। शमेल लुपिताल सेंटर दे फ्लाक में 87 साल की 87 years old की श्रीमती रावती जोगू पैदाशी नाम बंधु और जिन्हें सब लोग रावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री गुरुदत्त जोगू के घर शमेल लुपिताल सेंटर दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट फ्री रारोड यूनियन पार्क में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दयालक्ष्मी वेंकटा पिल्ले पैदाशी नाम पोयनुसामी और जिन्हें सब लोग सती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रारो यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 एएम। कौन डोमिनिक रोड पेटिराफ्रे में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीला रंजीत पैदाशी नाम दसवा और जिन्हें सब लोग मीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विशाल रंजीत के घर कॉन्डोमिनिक रोड पेटिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेटिराफ्रे मोमास्काल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 एएम। रॉयल रोड ग्रांबोआ में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री किसुन बंधु जिन्हें सब लोग श्री किसुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके दामाद श्री दानन गुरापा के घर रॉयल रोड ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 एएम। लेकाजेन क्यूपिप में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्र सिंह जीवन जिन्हें सब लोग लुल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर लेकाजेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 एएम। रारोड पुस्तिफ्लाक में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेशमा सिपेसान पैदाशी नाम

बलवंत और जिन्हें सब लोग पूनम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोधपुर जिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडुमास का किश्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बेटका रोड मोगू में 86 साल की श्री नंद कुमार मनरत्ता जिन्हें सब लोग अनिरुद्ध के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके दामाद श्री राजेन देवीदीन के घर बैठका रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। एनएचडीसी नंबर एक मापू में 49 साल के श्री राजकुमार गौर जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उन्हीं के घर NHDC नंबर 1 मापू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। रॉयल रूट क्वीन विक्टोरिया में 90 साल की श्रीमती दुलारी ओरा जिन्हें सब लोग मामा आनंद महादेव के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी बेटी श्रीमती साधना बंधु के घर रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड ब्रिजवेजिया में 85 साल के जनाब अब्दुल नाइम फुंडन जिन्हें सब लोग नाइम के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे जनाब मोहम्मद जावेद फुंडन के मकान रॉयल रोड ब्रिजवेजिया से निकालकर दफनाने के लिए बुबुआ का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। तामारिन रोड शामुनी में 66 साल के श्री सत्यजीत बहादुर जिन्हें सब लोग DMD के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भाई श्री प्रीतम बहादुर के घर तामागे रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एलिमोंग रोड गुडलेंस में 85 साल के श्री राजदन ओरिया जिन्हें सब लोग दर्शान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय उड़िया के घर एलिमोंग रोड गुडलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोज गुडलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। विक्टोरिया रोड थ्रू द डुस में 82 साल के श्री देवेंद्र हरिमन जिन्हें सब लोग देविन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी विधवा संजीता हरिमन के घर विक्टोरिया रोड खुदुदुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और ब्रांच रोड लालमाटी में 76 साल के श्री केदर सरी की सुन जिन्हें सब लोग सुवेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती बृंदा सरी की सुन के घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति

0: Express तड़का
1: RM2 Radio Mastery.
2: बार बार दिल फिसल जाता है जब आपकी बात होती है. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से RM2 Radio Mastery पर. अर्ली मॉर्निंग को आपको मिला मनीषमा का साथ. अब मेरी बारी है इस नमनी 9 बजे तक आपकी टाइमलेस तड़का में, यानी कि अमेजिंग टाइमलेस सॉन्ग्स 80s, 90s एंड 20s के. तो यही फिर साथ दीजिए और बनाते हैं इस संडे को द बेस्ट
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2 Radio

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Sports News, latest updates.
5: Sports News,
1: Radio Musti in the mix.
0: सारे 7 बजे हुए हैं, चलिए सुनते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स आपसे विकास जी। गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग नीलमणि, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। फीफा विश्व कप 2026 रोमांचित करने लगा है और दिल की धड़कनें भी तेज हो

वही है। इंग्लैंड के द थ्री लायंस दहाड़ रहे हैं, फ्रांस के ले ब्लू अपनी धार तेज कर रहे हैं, ब्राजील के ला सेलिसाओ और मेसी का अर्जेंटीना फुल फॉर्म पे है। ओपनिंग मैच गुरुवार 11 जून की रात 11 बजे मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, फाइनल 19 जुलाई की रात 11 बजे मंगलवार 16 जून की रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस सेनेगल, और सेव द डेट एंड टाइम बुधवार 17 जून की सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया, उसी रात 9 बजे पोर्चुगल का मुकाबला, रोनाल्डो के पोर्चुगल का मुकाबला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, और 17 जून की रात 12 बजे ही इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। ये हैं कुछ प्रमुख फिक्स्चर्स थरथरी और कंपन पैदा करने के लिए, क्योंकि अंत में जो जीता वही सिकंदर, अंत में फाइनली 19 जुलाई की रात 11 बजे एक महाफाइनल जिसमें दो संपन्न फुटबॉल राष्ट्र ही प्रवेश कर पाएंगे, इसलिए सुनते रहिए। इस बीच इंग्लैंड के द थ्री लायंस ने तैयारी के रूप में कल न्यूजीलैंड को 1-0 से परास्त किया, गोल कर्टिसी ऑफ कैप्टन हैरी केन खेल के 45वें मिनट पर, और हैरी केन जिसने इंग्लैंड के लिए अपना 79वां गोल स्कोर किया इन जस्ट 113, केवल 113 मैचों में इतने सारे गोल, 79 गोल। कल के इस मैच में 11 नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया सेकंड हाफ में भी, और जिनमें लिवरपूल के 17 ईयर ओल्ड रियो एनगुमोहा को भी खेलने का मौका दिया गया, हालांकि वो टोमा टुगल के 26 मैन स्क्वाड में नहीं है। इट वॉज जस्ट ए ट्रेनिंग गेम, कहा टोमा टुगल ने। सो कुछ अन्य नतीजे सुनिए वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में। सऊदी अरब ने पुएर्टो रिको को 3-0 से हराया, कनाडा 1 रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1, हेटी 1 पेरू 2, बेल्जियम ने चुनिजिया को 5-0 से परास्त किया, रोनाल्डो के पोर्चुगल ने चिली को 2-1 से धोया, रोमेनिया भी 2 वेल्स 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए 1 जर्मनी 2। ये बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, काई हावर्ट्स एंड लेरोय साने ऑन टारगेट फॉर जर्मनी के नेशनल मानचाफ की जीत हुई 2-1 से, पनामा 1 बोस्निया हर्जेगोविना 1, स्विट्जरलैंड भी 1 ऑस्ट्रेलिया 1 बोलीविया 0 स्कॉटलैंड 4, एक क्लिनिकल स्कॉटलैंड ने 4-0 से जीत हासिल की बोलीविया के विरुद्ध, इंग्लैंड 1 न्यूजीलैंड 0 कैटा 0 एल साल्वाडोर 0 जमैका 0 साउथ अफ्रीका 1, ब्राजील के ला सेलेसाओ ने इजिप्ट को 2-1 से हराया, ब्रूनो गिमारेज एंड एंड्रिक ऑन टारगेट फॉर ब्राजील, जबकि मुस्तफा जीको का एक गोल रहा इजिप्ट की ओर से। सो ब्राजील की जीत हुई 2-1 से, वेनेजुएला 1 टर्की 2, आर्मेनिया 1 कजाकिस्तान 1, जिब्राल्टर ने केमैन आइलैंड्स को 4-1 से हराया, अल्बेनिया 0 लुक्जमबर्ग 1 और केप वर्दे 3 बर्मुडा 0। आज सुबह ही लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना ने ऑन्जुरास को 2-0 से परास्त किया, लोटारो मार्टिनेज और सिमियोन का 1-1 गोल फॉर अर्जेंटीना जिसकी जीत हुई 2-0 से। आज ही कुछ अन्य मैच खेले जाएंगे, डेनमार्क का मुकाबला यूक्रेन से, क्रोएशिया वर्सेस स्लोवेनिया, ग्रीस टक्कर लेगी इटली के स्क्वाड्राजुरा से, मोरक्को वर्सेस नॉर्वे और इक्वाडोर का मुकाबला आज ग्वाटेमाला से होगा। एक और फ्रेंडली मुकाबले में क्यूराकाओ ने आज क्यूरासाओ ने अरूबा को 4-0 से परास्त किया। बता दें कि कल सोमवार की रात फ्रांस का मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड से है, और बुधवार रात इंग्लैंड वर्सेस कोस्टारिका, ये इंग्लैंड के द थ्री लायंस का आखिरी तैयारी मैच होगा, इंग्लैंड वर्सेस कोस्टारिका यानी द लास्ट डांस बिफोर द महादांस। टेनिस में 19 साल की रूसी खिलाड़ी मीरा अंद्रीवा बाजी मार गई, फाइनल में उसने क्वालिफायर माजा च्वालिंस्का को मजा चखाया 6-3 और 6-3 से परास्त कर, 1992 से मोनिका सेलेस के बाद मीरा अंद्रीवा रोलांग गारोस जीतने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी बन गई है एट द एज ऑफ 19, इसलिए उसको हार्दिक बधाई। आज पुरुष वर्ग का फाइनल होगा, अलेक्जेंडर जेरेव का टाइम आ गया फाइनल में, उसका मुकाबला आज इटली के फ्लाविओ कोबोली से है।
फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के मोनाको ग्रां प्री में कल किमी एंटोनेली ने ही पोल पोजीशन हासिल किया, यानी कि आज मोनाको ग्रां प्री रेस वही शुरू करेगा पोल पोजीशन से।

0: क्रिकेट में एक और टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ 368 रन बना चुकी है अपने प्रथम टेस्ट के प्रथम दिन की समाप्ति तक, 3 विकेट गंवाकर, किंतु 2 सेंचुरीज भी बनी है। केएल राहुल ठीक 100 रन बनाकर आउट हुआ, शुभमन गिल 103 पर अभी नॉट आउट है। तो दूसरी ओर भारत के युवा सेंसेशन 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को T20 भारत के T20 स्क्वाड में जगह मिल गई है। इंग्लैंड और आयरलैंड 2 का वो हिस्सा बन गया है और इतिहास का हिस्सा भी, क्योंकि वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है भारत के एक स्क्वाड में जगह बनाने के लिए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की आयु में जगह बनाई थी। सो इन सबको हार्दिक बधाई। लोकल स्पोर्ट्स में आज रविवार की सुबह 9 बजे से कौबानन ग्रां बोआ के फुटबॉल मैदान में 8-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल अगले रविवार 14 जून के लिए रखे गए हैं, यानी सारे प्रीलिम्स और क्वार्टर फाइनल राउंड आज ही संपन्न किए जाएंगे। और ये 8-a-side टूर्नामेंट आयोजित किया गया है बॉशेरी, ग्रां बोआ, लाफ्लोरा और रिवियर पोस्ट के टी बेल्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। आज सुबह 8 बजे जिन टीमों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए भी ये जगह है, स्पेस है। आज सुबह 8 से 9 के बीच रजिस्ट्रेशन वहीं पर किया जाएगा। तो ये थी खेल कुछ संबंधी चंद जानकारियां सुबह के 7:47 और 27 सेकंड। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपीए सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज, प्री कासे लो लावर, ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक, लोडवास अबान प्री की पू फेयर ओ मेम गाय पाको, डेकोरेशन पू ला काज ऑन डन ऑन डेओ, सैनिटेयर, लेविए, गाजन आर्टिफिशियल, ऑफर इज टू पू प्लीज रेंसेनमेंट चेक पास फेसबुक क्वालिटी देखो।
3: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: RM2
5: Radio Musti.

0: Express Tadka.
1: RM2 Radio Masti.
2: जी हाँ, इट्स योर टाइमलेस डरकाइन। दोस्तों, आपको पता है आज है वर्ल्ड केयरिंग डे। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी की हेल्प करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सच तो ये है कि एक सिंपल सी स्माइल, थोड़े काइंड शब्द या फिर किसी की बात ध्यान से सुनना भी केयरिंग का सबसे खूबसूरत तरीका होता है। तो आज कोशिश कीजिएगा कि इसी एक इंसान का दिन थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। एंड ऊपर से आज हम सिर्फ वर्ल्ड केयरिंग डे नहीं मना रहे हैं, आज है वर्ल्ड सेफ्टी डे भी। तो घर से निकलते वक्त सीट बेल्ट लगाना, रोड क्रॉस करते वक्त फ़ोन साइड में रखना या फिर अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी रूल्स फॉलो करना, ये छोटी छोटी आदतें ना बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है हमें। तो याद रखिए, सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, जिम्मेदारी है। सो स्टे सेफ व्हाइल लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती। इन कुछ देर में आपके मैसेजेस भी पढ़ने वाले हैं, तो यही पर आप कनेक्टेड रहना। बनाते हैं आपके संडे को ब्यूटीफुल साथ में
1: रेडियो मस्ती।
0: हिट म्यूजिक ओनली।
1: फील्स अ मस्ती रेडियो मस्ती।

0: Express Tadka.
1: RM2
2: Radio Masti.
3: Already 7:54. Yes, आपके messages पढ़ने का time हो चला है. Hello to all those जो अभी connected हुए हैं. Good morning to you. And we have पहला मैसेज आया है ललिता जितिन जी की तरफ से. आप विश कर रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग और बोल रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम को अपनी हॉट हॉट टी के साथ. एंड वी ऑल्सो हैव कुमार दाबीचंद जी जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जॉगिंग भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम. ओके आप बार है, आप तो मल्टी टास्किंग के किंग हो. नेक्स्ट जो सॉन्ग आप मांग रहे हो अपने लवली पापा श्याम दाबीचंद के लिए जो पहले बह के रहने वाले हैं. और मैसेज भी है लव यू पापा एवरी डे. And we also have नाम नहीं लिखा लेकिन मैसेज तो है. आप बोल रहे हैं कि वे सॉन्ग आपके दोस्त प्रीति कुनाय पूर्णिमा सिपोल तिरुवादी शिवरानी परमेश्वर विदुला रामफॉल एंड आनी के लिए. और विश कर रही है आप सभी को नाइस संडे. अरे आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आपको बता देते हैं कि क्या करना इंसानियत है और सेफ रहना समझदारी है. आज आप दोनों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा क्योंकि हम मना रहे हैं आज वर्ल्ड केयरिंग डे एंड सेफ्टी डे. सो स्टे सेफ व्हाइल लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती. नेक्स्ट गाना गोज आउट टू ऑल ऑफ यू.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
0: टाइमलेस तड़का.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: सुबह के 8 बजे है।
6: सबको के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे की भोजपुरी समाचार सुन। जा गाड़ी चलाए बखत मोबाइल फोन के प्रयोग करे होला आदमी के खिलाफ सरकार अपन कानूनी कार्रवाई के आर जस्ती सख्त करता। नवा रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते बखत फोन के इस्तेमाल करे के पकड़े जाए के पर चालक के 5 से 10 पॉइंट काट देवल जाए। संबद्ध मंत्रालय पुलिस के संगे मिलके ई बात के निमन से देखा था वंजा कि ड्राइविंग के दौरान फोन के प्रयोग करे पर कुल मिला के कितना चालान काटल गल बाती। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क

सुरक्षा की दिशा में ऐसा प्रकार के मूल्यांकन पहला हला हुआ था। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एगो बड़का और महत्वपूर्ण मुद्दा सकी हो। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह ई बोलन की मॉरिशस के खाए पिए के जन जन चीज बातें उ दूसर देश पर अपन निर्भरता के चाहेला कमती करे के और अपन कोशिश के आर जस्ती तेज करे के सिंचाई किसान खातिर काम करुआ के खोजे के बिया और खाद पर सरकारी छूट माने सब्सिडी देवे के और लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती खातिर जमीन उपलब्ध करावे के ही ये लक्ष्य सकी पूरा होया। आज 7 जून के हमने मनावत है जा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। सब लोगन खातिर स्वस्थ सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर जस्ती बल देवल जाता। ये हमने के जीव खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बातें कहे कि ऐसन बखत में जब महंगाई बढ़ ले जाता तो और खाद्य आपूर्ति से जुड़ल चुनौती एगो चिंता के विषय बन गल बाती। 3 कोरी 11 बरिस के मारी नुएली लोरेंट और ओकर दामाद लिनले आजी के काल एगो बड़ा बड़ा मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स के जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहरावल गल। उत्तरी प्रांत के आजसू अवसर के बगल से काल फजर के बेजिटोंबो में लिनले आजी के घर पर ही छापा मारल गल। कुल मिला के 5 गो पौसेल के जब्त करल गल बाते जिमें 500 ग्राम से जस्ती सिंथेटिक ड्रग्स पावल गल जेकर कीमत 7.7 मिलियन रुपए के बतावल जाता। तो दूसर देश में अमेरिका और ईरान के बीच के ईरान और अमेरिका में बातचीत के कोशिश के बीच फिनों से तनाव बढ़ गल बाते। ईरान तक कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल के छोड़ के हमला कर दिलक। पलटवार में अमेरिका भी ईरान के कई गो ठिकाना पर ही धावा बुल्लक ओकर रेडर सर्वेलेंस टावर के भी उड़ा दिलक। तो एक संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभर। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।

0: यही पर रहिए आरएमजी रेडियो मस्ती पर स्टे कनेक्टेड. अभी के लिए सुनते हैं मौसम का हाल. वेदर अपडेट्स फॉर यू.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: आम हालत, दक्षिण में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जबकि मस्कारेंस की दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटी साइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. आज सुबह दक्षिण, पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा. रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह रहकर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों के उस पार. अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच. तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय 6:40 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:37 पर.
4: Fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La boîte de butter cookies d'Ancita à 129,95 € et le set de vaisselle à dîner de 24 pièces à 999,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papas, merci.
5: On est tous winners!
1: RM2
2: Radio Musty.

0: Podcast Tarka.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: कहता है पल पल आपसे कि हमसे दूर न जाइए, साथ निभाते रहिए अपने आरएम2 वीडियो मस्ती का। स्वागत है आपका फिर से, बिग हेलो गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आप अभी अभी कनेक्टेड हुए हो, 8:15 होने को है, नमनी पूरे जोश के साथ। आई नो सुबह सुबह ड्रूपी सा फील होता है, लेकिन गेट योरसेल्फ टुगेदर यार, क्योंकि संडे है एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जो भी प्लान आपने किया है उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तो चलिए निपटाते हैं सारा काम और साथ में वी गॉट दिस।
0: टाइमलेस तड़का,
4: मेरा दिल यार का दीवाना।
1: RM2
2: रेडियो

0: TBS
1: 떨까 RM2 Radio Musti
2: दिल में क्या है बता दीजिए हमें भी आपके मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर मैं तो आ तू खुद से तो ना छुपा वी हैव विदेशी जी जो मांग रहे हैं नाइस सॉन्ग अनुषा जी के लिए कोई भी अच्छा गाना जरूर जी हम ढूंढेंगे सबसे बेस्ट वाला गाना आपके लिए चिल्लाएंगे एंड वी हैव आप है शीतोहल जी आपने बेस्ट विशेज भेजे हैं गुड मॉर्निंग के And we have, hello, can you please dedicate a birthday song aapki amazing sister Gitika ke liye, little sister Kemi ke liye, Papa Shashi, Dadi Sunita, Pupu Sandhya, Pupa Manoj and Shriya Arav, Zaru ji, gana chalayenge, birthday wala aapki amazing behen ke liye. And also we have, aap hai Hans connected humare saath, Saint-Julien Dutmont se hai, and aap maang rahe hai next song apni pyari pyari dost ke liye, Zaru ji, आप ऐसे ही स्टे कनेक्टेड विद अस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए चलाएंगे जरूर गाना
3: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV, qui peut disponible au MBC Play à partir des 16, hein, pour 10 300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents c'est le fort. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
0: RM2
4: Radio Musty.
5: Communiqué depuis ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère paie un fonds public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bien enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.govmu.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
0: RM2
4: Radio Musty.

0: Okay, you watch your mail, I'll get back to you.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: Get ready for the biggest World Cup ever!
4: 2026 FIFA World Cup.
3: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
4: चलिए
3: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
4: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
5: चलो वर्ल्ड कप की ओर। 7 जून काउंटडाउन जारी है, केवल 4 दिन रह गए हैं। पहला मैच मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका आइकॉनिक स्टेडियो अस्तेका में ये होगा 11 जून को, ये 11 बजे खेला जाएगा। वैसे आइडिया ढूंढना पड़ेगा, नुस्खा ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से रात भर देर रात तक जागे रहे मैच देखने के लिए और सुबह जल्दी उठ जाए मैच देखने के लिए। कुछ मैच 5 बजे, सुबह 5 बजे भी है। लेटेस्ट न्यूज में जर्मनी ने यूएसए को वार्म अप मैच में हराया, इंग्लैंड की भी जीत हुई 1-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ। मिस्टर रिलायबल, मिस्टर इरिप्लेसेबल हैरी केन का गोल। अर्जेंटीना के लिए इंजुरी ब्लो, डिफेंडर लियोनार्डो बालियर्डी ऑफिशियली रूल्ड आउट। वैसे अर्जेंटीना ने ऑन्जुरास को आज 2-0 से हराया। पोर्टुगल की जीत में ब्रूनो फर्नांडेस का एक गोल। ब्राजील ने 2-1 से इजिप्ट को हराया। वैसे इस वर्ल्ड कप के बाद बालों दो विनर भी चुना जाएगा। यूरोपियन चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप कंबाइंड परफॉर्मेंस पर विनर डिसाइड किया जा सकता है। फ्रंट रनर में इंग्लैंड का कप्तान हैरी केन और रेनिंग होल्डर उस्माने देम्बेले हैं जो फ्रांस के लिए खेलता है। बार्सिलोना से टीनेज सेंसेशन लामिन यमाल भी उसके चांसेस हैं। पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियन

0: लीग जीता, लीग टाइटल जीता। उधर बायर्न म्यूनिख ने डोमेस्टिक डबल की और हैरी केन का रिकॉर्ड गोल ताली रहा, स्टैगरिंग 61 गोल्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस। अगर हैरी केन के गोलों के साथ इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में दूर जाती है तब हैरी पुत्तर फेवरेट बन जाएगा। उस्मानी देम्बेले 2025 में बालों दो जीत पाया था। चैंपियंस लीग में क्रूशियल गोल रहे चेल्सी, लिवरपूल और केन के बायर्न म्यूनिख को हराने में। इस वर्ल्ड कप में फ्रांस के साथ उसका परफॉर्मेंस क्रूशियल होगा। लामिन यमाल हाईली फेवर्ड डार्क होर्स, 16 लालीगा गोल, बार्सिलोना के साथ 10 चैंपियंस लीग गोल स्कोर करने वाला यंगेस्ट प्लेयर, बार्सा के साथ बैक टू बैक टाइटल्स। स्पेन अगर वर्ल्ड कप जीतता है जिसमें यमाल का कमाल हो तब यमाल ही बालों दो जीत कर धमाल करेगा। वर्ल्ड कप स्पेशल en route vers la Coupe du Monde J-4, तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं।
1: FIFA World Cup 2026 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates

0: profit de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: आज इस वर्ल्ड केयरिंग डे पर एक सवाल है ना कि कोट। आखिरी बार आपने किसी को बिना वजह के अप्रिशिएट कब किया था? जवाब मत दीजिए। क्या पता शायद आज का दिन परफेक्ट है अप्रिशिएट करने के लिए। तो क्या करें? लग जाओ काम पर।
0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2 Radio Musti.

0: Shameless Tadka.
1: RM2 Radio Masti.
2: 847 already. गाना मैंने ठीक से सुना क्या? उसने बोला it's our time guys. See कहा सच में अपना टाइम आ गया है रिलैक्स करने का. अगर वीकडेज पर आपने बहुत बहुत मेहनत किया है रेस्ट तो बनता है. तो खूब सारा पानी पीजिएगा, खाना टाइम से खाओ एंड डिटॉक्स जूस भी आप बना सकते हो. एंड वैसे नेक्स्ट आओ मैं पूनम आने वाली है अपने रेसिपीज टिप्स के साथ. तो यहीं पर रहना ताकि आप मिस ना करो उन अच्छे अच्छे टिप्स को. तो इसी के साथ वी मीट सून. टेक केयर. गुड संडे टू यू.
0: Timeless Tadka.
1: RM2 Radio Masti.
0: Timeless Tadka.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय या बनी हुई है। इस साल का विषय रखा गया है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है। डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में बदलाव लाया गया है। ये सुधार

0: देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सुरक्षा के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। 71 साल के मारी नुएली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहराया गया। उत्तरी प्रांत के आजसु अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस समय हवाई द्वीप में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये 29वें दौर की वार्ता है और इसमें सैन्य सहयोग को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए रास्तों की तलाश की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। एडमंटन इस्लामिक सेंटर लंदन में 73 साल के 73 years old के जनाब मोहम्मद नाहूर, जिन्हें सब लोग भाई नोआ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे एडमंटन इस्लामिक सेंटर से निकालकर दफनाने के लिए गार्डन फिरदौस कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। मालाउटिक रोड कैथोबोन में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के जनाब महबूब बसरदी जिन्हें सब लोग बाई महमूद के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी बेगम मिसिज रमीजा बसरदी के मकान मालाउटिक रोड कैथोबोन से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कैथोबोन स्थित सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट नून, क्षमा करना। नंबर 81 पियतों पियालावल सैंक्रॉ में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्र भूषण हवलदार जिन्हें सब लोग कृतानंद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुबेदा हवलदार के घर नंबर 81 पियतों पियालावल सैंक्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Body Brunch RM2 Radio Masti.
1: Good morning. नीलमणि ने मेरी मॉर्निंग बना दी और कहते हैं ना मनीष माँ ने सबकी मॉर्निंग सेट कर दिया. अब आ गई हूँ मैं और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब. चलो आपकी मॉर्निंग को फुल ऑन मस्ती के साथ बनाते हैं. मैं हूँ आपके साथ पूनम RM2 रेडियो मस्ती पर. अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर. तब तक इंजॉय कीजिए बॉली ब्रंच का ये प्यारा सा गाना.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: नमस्कार, 22 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती के साथ। और सोनू निगम में की आवाज़ में आपने सुना साथिया सॉन्ग। बहुत ही प्यारा गाना है, मतलब जितना भी रोमांटिक हो सकता है ना, इसके अंदर वो जो फील आती है ना, इसी गाने से आती है। तो चलिए भाई, कल हमारे सभी आरजेज आपसे मिले, मस्ती की गेम्स खेले और बहुत सारी गिफ्ट्स दिए और सबने इतना प्यार दिया, चाहे फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, और जो लोग वहाँ पर गए उन सभी ने हमारा दिल छू लिया। और मैं कहती हूँ कि एक और खुशखबरी है, आज हमारी टीम है प्लेजेंस शॉपिंग विलेज। तो अगर आप जो भी पास हैं वहाँ पर, आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी हमारी दोस्त होंगी, हमारी आरजे होंगी नीतिशा, और आपको एंटरटेन करेंगे 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, यानी कि 12:30 to 3:30। आप वहाँ जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया और अभी एमबीसी प्ले ऐप जो 1.0 जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बिल्कुल मत भूलिए, उसको बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti।

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:33 हो गए हैं और संडे का प्यारा सा दिन 7 जून 2026 आ गया भाई। उठने वाले उठ जाओ, और जिन्होंने काम पे जाना वो तो जा रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलिए 2-3 प्यारे प्यारे से मैसेज ले लेते हैं। इस समय आज है केयरिंग डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो भाई हमारे लिए हमारे बिडवाग विदेशी जी साथ दे रहे हैं और अनुषा को कह रहे हैं क्यों आज घर पे हो, चलो आज तुम्हें लंच कराता हूँ और थोड़ी सी शॉपिंग कराता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हारे वही कपड़े देख देख के मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। तो क्या बात है अनुषा, आज आप रेडी हैं कहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए या कुछ लंच करने के लिए? तो चलिए भाई अनुषा जी रेडी हो जाओ। साथ में ललिता जीतन जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और इंजॉय कर रही हैं अपने परिवार के साथ में और अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ में ये एक प्यारा सा प्रोग्राम, और अपने कलीग्स टीचर सिमी, रोमी, स्वीटी, सोनिया, दीशी, प्रिया, रवि, आशले की ललिता जीतन जी भी लवाचिया से साथ दे रही हैं, तो बस इंजॉय कीजिए आपके गाने। साथ में कुमार देवी चरण जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं पापा को बस इतना कि जान हो मेरी, आपको पता है क्या, हाय रे ये तो होता ही है, पापा सबकी जान होते हैं। और इसके साथ में श्याम टुल्लू जी भी जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट गाना मेरे लिए चलाइएगा, तो मैं आप सबके नाम करती हूँ ये वाला गाना।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Poly Branch RM2 Radio Masti.
1: Your daily horoscope.
2: RM2 Radio Masti.
3: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरएम टू रेडियो मस्ती पर और टाइम हो चला है राशि फल का और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं।
4: एरीज मेष राशि,
3: आज आपकी मेहनत और एनर्जी दोनों रंग ला सकती है। नई जिम्मेदारियां भी आसानी से आप संभाल लेंगे। कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। दिन ब्राइट और पॉजिटिव रहेगा। लकी कलर है रेड। लकी नंबर है 8।
4: टॉरस वृषभ राशि,
3: आज अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालिए। फैमिली और फ्रेंड्स से अच्छी वाइब्स मिलेगी। मन हल्का खुश महसूस होगा। दिन कॉन्फिडेबल कंफर्टेबल और हैप्पी रहेगा। लकी कलर है ग्रीन। लकी नंबर है 4।
4: जेमिनी मिथुन राशि,
3: आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल दिखाएगी। नई मुलाकात या नई बात फायदा दे सकती है। आइडियाज की कमी नहीं रहेगी। दिन लाइवली और एक्साइटिंग रहेगा। लकी कलर है येलो। लकी नंबर है 5।
4: कैंसर कर्क राशि,
3: चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी ये। आज अपनों का साथ और आपका मूड अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातें भी खुशी देगी दिन को और दिमाग अच्छा बैलेंस रहेगा। दिन पीसफुल और प्लेजेंट रहेगा। लकी कलर बनेगा व्हाइट। लकी नंबर है 2।
4: लियो सिंह राशि,
3: आज आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग नजर आएगी। काम में आपकी प्रेजेंस महसूस की जाएगी। खुद पर भरोसा बनाए रखे। दिन एनर्जेटिक और रिवॉर्डिंग रहेगा। लकी कलर है गोल्डन। लकी नंबर है 1।
4: वर्गो कन्या राशि,
3: आज प्लानिंग का पूरा फायदा मिलेगा। जो काम सोच रहे हैं उसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। फोकस अच्छा रहेगा और माइंड क्लियर रहेगा। दिन प्रोडक्टिव और स्मूथ रहेगा। लकी कलर है स्काई ब्लू। लकी नंबर है 7।
4: लीब्रा तुला राशि,
3: आज रिश्तों में वार्मथ एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपकी मुस्कान लोगों का दिल जीत सकती है। अच्छी कंपनी दिन को खास बना सकती है। दिन लाइट और जॉयफुल रहेगा, तो एंजॉय कीजिए। लकी कलर है पिंक। लकी कलर है 6।
4: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
3: आज आपका फोकस और डिटर्मिनेशन मजबूत रहेगा। कोई अच्छी खबर उत्साह बढ़ा सकती है। आपकी मेहनत नजर आएगी। दिन स्ट्रांग एंड मोटिवेटिंग रहेगा। लकी कलर बनेगा मेहरून। लकी नंबर है 9।
4: सजिटेरियस धनु राशि,
3: आज कुछ नया सीखने या करने का मन करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बीत सकता है। दिन फन और रिफ्रेशिंग रहेगा और इंटरेस्टिंग भी। तो लकी कलर बनेगा आपका पर्पल। लकी नंबर है 3।
4: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
3: आज कंसिस्टेंसी आपका प्लस पॉइंट रहेगी। काम में अच्छे रिजल्ट्स मिलने के संकेत हैं। आपकी डेडिकेशन सराही जा सकती है। दिन स्टेबल और सेटिस्फाइंग रहेगा। लकी कलर है ब्राउन। लकी नंबर है 10।
4: एक्वेरियस कुंभ राशि,
3: आज क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन दोनों स्ट्रांग रहेंगे। आपकी यूनिक सोच लोगों को इम्प्रेस करेगी। कुछ नया प्लान बन सकता है। दिन इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग रहेगा। लकी कलर है इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर है 11।
4: Pisces मीन राशि,
3: आज दिल खुश रहेगा और माइंड रिलैक्स रहेगा। म्यूजिक मेमोरीज एंड अपनों का साथ आपको मिलेगा। पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलेगा आपको स्मूथिंग और ब्यूटीफुल डे। तो लकी कलर बनेगा आपका 3 ग्रीन। लकी नंबर है 7। तो ये था आपका राशिफल। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और स्माइल करते रहिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, रेडियो मस्ती के साथ।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: Body Branch
5: RM2 Radio Masti.

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: संडे का असली गेम जो होता है ना वो ये होता है जब आप फैमिली के साथ बैठे होते हैं और छोटा सा कोई गेम खेल रहे होते हैं या पुरानी कोई एल्बम निकालते हैं उसके अंदर से फोटोज देखते हैं और कोई बोलता है कि हाय मैं कितना गंदा लग रहा था, अरे मैं कितनी पुरानी सी ऐसी लग रही थी कि पता नहीं ये कैसे कपड़े डाले हुए हैं मैंने. पर ये जब टाइम होता है ना आपको क्या पता कितना इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए, तो बस कुछ थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए कर लीजिए. और पेरेंट्स अगर बच्चों को कहीं बाहर घुमा के लेकर आ सकते हो तो बिल्कुल लेकर आ जाओ, उनका तो बनेगा दिन, आपकी उनको स्माइल देख के आपका भी बन जाएगा. तो चलिए हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं ममता जी और जो बेस्ट विशेस दे रही हैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सुनील को और कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो और आपने सबका ध्यान रखा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड केयर. अश्विन अनीश एंड केविना को बहुत ही प्यार दे रही हैं, उनकी सिस्टर सलोनी रामफल और सुनीता बुधन को भी बहुत प्यार दे रही हैं और कह रही हैं तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि सारी टेंशनें मैं तुम्हें देती हूँ. क्या बात है भाई, यही तो होता है बहनों का प्यार, हमेशा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और पूछते रहते हैं तुम ठीक हो ना, सब ठीक है. अरे चलिए भाई एक और प्यारा सा मैसेज है हमारा आज, एक प्यारा सा बर्थडे है गीतिका का और उनके लिटिल सिस्टर खेमी, पापा शशि, दादी सुनीता, फूफू संध्या, फूफा मनोज एंड श्रिया एंड आरव उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे, तुम बहुत ही खास हो हमारे परिवार के लिए, तो हमारी तरफ से भी पूरी एमबीसी की टीम के लिए आपके लिए हम भी ये बजाना चाहते हैं. ये लीजिए, इंजॉय कीजिए.

0: from Radio Musti.
1: Body Brunch RM2 Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Time check, सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. 71 साल के मारी नुएली लोरों और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहराया गया. उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था. कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी जिसकी लागत 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया. रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों को के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे. संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे गए हैं. परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस प्रकार का मूल्यांकन पहली बार के लिए किया गया है. बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन नदियापाल सिंह के अनुसार मॉरिशस को खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को तेज

0: इजा करना होगा। उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है। सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों एवं खादों पर सब्सिडी देना, लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों बहरीन और कुवैत पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद मध्य पूर्व फिर से क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। शनिवार को हुआ यह हमला अमेरिका की ओर से शुक्रवार देर रात ईरानी ठिकानों पर की गई हवाई हमले के जवाब में किया गया। इस भीषण हमले के बाद खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पिछले कई हफ्तों से पर्दे के पीछे चल रही बातचीत और कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह से बेपतरी हो चुके थे। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। कौन डोमेंग रोड पिछे राफ्रे में 68 साल की 68 years old की श्रीमती मीला रंजीत पैदाइशी नाम दसुआ और जिन्हें सब लोग मीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विशाल रंजीत के घर कौंडोमेंग रोड पिचिकाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचिकाफ्रे मो मस्काल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड ग्रांबोआ में 87 years old की श्री की सुन बंधु जिन्हें सब लोग श्री की सुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके दामाद श्री दानन गुरापा के घर रॉयल रोड ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: लंच
1: आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: 10:09 हो चुके हैं और ये जो पीछे गाने के बाद बोला ना ए मर जाना, ओए क्या बात है, ये तो ऐसा टाइम होता है जब मस्ती करते हैं और ऐसे जो होते हैं ना पंजाबी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं ओए मर जाने कितने जा रहे हैं, ऐसे ही होनी चाहिए। ये जो मस्ती होती है ना घर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और असली जो मज़ा होता है ना संडे का जब मम्मी घर में गर्म गर्म खाने की खुशबू जैसी वाली खुशबू सुंघाए और बोले कि हाँ भैया तुमने क्या खाना है, चाहे वाइफ बनाए चाहे मम्मा बनाए, मज़ा आ जाता है क्योंकि आपने पूरे दिन काम किया है पूरे हफ्ते काम किया है तो घर में बैठ के इंजॉय करो, थोड़ा सा कहते हैं आलस मार लो, अगर थोड़ा सा एंजॉय करना है गाने तो गाने हमारे बिना तो नहीं जाओगे ना कहीं पे भी, तो बस एंजॉय कीजिए अपने गाने और मस्ती कीजिए। ये गाना आप सबके लिए, तब तक एंजॉय कीजिए ये वाला
0: बॉडी ब्रांच आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है, मजा आया ना। जिंदा दिल्ली का गाना जो है ना बहुत ही मस्त है, क्योंकि अगर हम जिंदा है तो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिंदगी में इंजॉय कर सकते हैं। और यही टाइम होता है जब हमें कुछ करके दिखाना होता है। मुझे नहीं लगता सोसाइटी को दिखाने की जरूरत है, बट खुद को दिखाने के लिए अरे हम भी तो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बोलने वाली बातें थोड़ी ना होती है। चलिए भाई, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त, थोड़े से उनके लिए भी हाय हाय हेलो हेलो कर लेते हैं। तो धनवेश्वर जी जुड़े हुए हैं अपनी वाइफ के साथ में और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू धनवेश्वर जी, बहुत दिनों के बाद मैसेज आया आपका मेरी तरफ से प्रोग्राम में। तो हैरी जी साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से और इंजॉय कर रहे हैं। ललित जी जुड़े हुए हैं साथ यूएसए से और उनका भी वेलकम है। और रमेश जी हैं जो कि पंजाब से हैं और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आजकल इंडिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है ना पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इसीलिए शायद लोग बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। यलेश जी जुड़े हुए हैं और आज तो जो उन्होंने पिक्चर भेजी है उसमें बिल्कुल बॉस वाली फीलिंग आ रही है। आज संडे है ना तो मेरे बॉस मुझे दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने यलेश फोटो देखते ही साइड कर दी। मैंने बोला क्या बात है, आज दूसरे बॉस आ जाएंगे। चलो भाई, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, ऐसे दोबारा से पिक्चर भेजते रहा करें गैलेश। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं डीजे देवी सेनी सेन जो कि लाल माटी से हैं और अपनी दादी को बोल रहे हैं आज उनका बर्थडे है, और उनको यही कह रहे हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जो मामा होती है उसके बाद दादी ज़्यादा प्यार करती है। सच बात है, दादी जो होती है सबसे ज़्यादा जो जितने मतलब पैम्परिंग मिलती है ना वो सिर्फ दादियों से नानियों से मिलती है। चलो भाई इंजॉय कीजिए और हम आपको कहेंगे दादी जी हैप्पी बर्थडे, और हमारी तरफ से ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बर्थडे हो और हम ना चलाएं।

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। बॉली ब्रांच आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: चलिए भाई, संडे का फैशन टिप देते हैं आपको, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को। तो आप जितना हो सके आज सिंथेटिक कपड़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। कॉटन पहनिए, लिनन पहनिए या थोड़े से गर्म कपड़े पहनिए, क्योंकि बाहर थोड़ा सा जो मौसम है मॉरिशस का थोड़ा सा ठंडा हो गया है और बारिश भी हो रही है, जिससे इसको ना आपको एक तो स्किन को ब्रीथ मिलती है और साथ में कम्फर्टेबल लगते हैं। जो लोग आपको देख रहे होते हैं ना, वो जज भी करते हैं कई बार, अरे इतनी ठंड हो रही है और इसने बिल्कुल ऐसे कपड़े डाले हुए हैं, जिससे इसको इसने स्वेटर नहीं डाला, मफलर नहीं डाला, थोड़ा सा उनको भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। अगर आपको लगता है कि ठंड है और आप सह सकते हैं तो अलग बात है कि कैसे भी कपड़े डाल सकते हैं। अगर नहीं सह सकते तो ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ मत करिएगा, थोड़े से कपड़े डाल लीजिएगा, वो वाले जो गर्म हो। और साथ में ये जो होते हैं ना कॉटन ट्राउजर्स या लिनन पैंट्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कीजिए, क्योंकि बाहर बारिश है तो थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, देखिए कितना यूनिक सा लगता है मफलर पहन के। एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत सा स्टाइलिश इफेक्ट आता है। चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, सिंथेटिक कपड़ों से हमेशा दूर रहो।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: संडे आ गया, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जो कह रहे हैं कि अरे हमने कल पार्टी की, कल मस्ती की और अब उठने का मन नहीं कर रहा, पर एक गाने सुन के थोड़ा सा उठना पड़ेगा। और मुझे पक्का पता है कि आपको उठना है, बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि फिर बाद में आप बोलोगे अरे हमारे ये काम रह गए, वो काम रह गए। इससे बेटर है पहले ही कर लो, टाइम से उठ जाओ, अरे आलस को छोड़ दो, त्याग दो। अब ये टाइम है थोड़े से गानों का और थोड़े से मैसेजेस पढ़ने का। चलो भैया, हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय कविता जी, और जो कि दिशा एंड नीतेश को एनिवर्सरी विश कर रही हैं, पूरी रामतोल फैमिली उनको विश कर रही है और उनको भी विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बस हमेशा ऐसे खुश रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है भाई, ऐसे एनिवर्सरी के लिए अगर बहुत सारे विशेज एक दूसरे की तरफ से आए तो फिर तो बनी जाता है ना दिन। और क्या बात है, लीना जी भी साथ दे रही हैं और अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड को, दोनों को बहुत मिस कर रही हैं क्योंकि वो इस समय काम पर हैं और कह रही हैं जल्दी आती हूँ और फिर आके खाना बनाती हूँ। ये लेडीज़ का सबका काम है भैया, खाना बनाना खिलाना ये नेचुरल आता है ना, आता है ना। ठीक है जी, भी हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं वरुणा जी केविन को और कह रही हैं कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, हमेशा ऐसे अच्छे बच्चे बन के रहो, हमेशा खुश रहो। यही बातें होती हैं और क्या होता है बर्थडे पे। पर हाँ, अगर केक कट करने वाले हो तो हमको भी याद करना और हमें बताना कि कैसी रही पार्टी, कोई फोटोज शेयर करना कल। तो जो भी कोई आरजे

0: बैठे होंगे, जरूर आपका वो देखेंगे और बताएंगे कि भी कैसा रहा आपका बर्थडे। चलो इंजॉय करते हैं, फिर मौजा मौजा लगाएंगा ना। चलो ये गाना आप सबके नाम।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:48 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं आपके ही रेडियो मस्ती के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। पता है जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? यस, वो छोटे छोटे मोमेंट्स, एक अच्छा सा गाना, एक गरम गरम चाय और एक प्यारी सी मुस्कान। जो भी आपके सामने बैठा हुआ है इस टाइम पे, जो भी है, आप उसके सामने मुस्कुरा दीजिए। यस, यही खुशी का इंतजार करते हैं हम लोग और उसी के लिए एक संडे मनाया जाता है। तो यही, बस इसे इंजॉय करते रहना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
0: Body Branch RM2 Radio Masti
2: avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026 avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 hein, pour 10-300 roupies et coupé pour sa package là 6 cents fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.

0: Daniel Westy
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix. Welcome to RM2
0: Radio Musty.
2: Radio Musty.
0: North, South,
2: 103.5.
0: East, West,
2: 96.4.
0: Center,
2: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musty.
1: Feel the musty.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है. इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. इस साल का विषय रखा गया है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन. बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है. डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में बदलाव लाया गया है. ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है. अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी कि ITU की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सुरक्षा के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में है. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और ज्यादा सख्त करने का निर्णय लिया गया है. रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे. संबद्ध मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे गए हैं. परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरह का मूल्यांकन पहली बार के लिए किया गया है. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार सुबह

0: यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद निवासियों को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ये हमला रूस के काफी अंदर तक वार करने की कीव की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बैठक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बैठ का रोड मोंगू में 86 साल के 86 years old के श्री नंद कुमार मनरत, जिन्हें सब लोग अनिरुद्ध के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके दामाद श्री राजेन दबीदीन के घर बैठ का रोड मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया में 90 years old की श्रीमती दुलारी ओहा, जिन्हें सब लोग मामा आनंद महादेव के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी बेटी श्रीमती साधना बंधु के घर रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड ब्रिजिविया में 85 साल के 85 years old के जनाब अब्दुल नाइम फुंदन, जिन्हें सब लोग नाइम के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे जनाब मोहम्मद जावेद फुंदन के मकान रॉयल रोड ब्रिजिविया से निकालकर दफनाने के लिए बोबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 hein, pour 6-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents fois. Ou pour capable suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: que...
1: Bolly Brunch, RM2, Radio Masti.
2: 11:09 हो चुके हैं और हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, आज हम जाएंगे प्लेसांस शॉपिंग विलेज, जहाँ पर 12:30 से 3:30 तक आपको हमारी पूरी MBC की टीम मिलेगी, जहाँ पर नीतू शाह होंगी और हमारी आज MBC प्ले ऐप लॉन्च होने वाली है। तो भाई हम आपको हो तो बहुत दिन गए हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि आप ये MBC प्ले 1.0 डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आपके फ़ोन में है या टैबलेट पर है, किसी भी ऑप्शन जो चूज़ करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। और लाइव टीवी, रेडियो टीवी, रेडियो आप सुन सकते हैं वहां पे अपने जो भी प्रोग्राम, जैसे कभी कुछ स्किप हो जाता है, कहीं आप बिजी होते हैं और आपको वही प्रोग्राम दोबारा सुनना होता है तो या देखना होता है, तो बस आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। क्योंकि और अगर आप बिल्कुल आसपास हैं प्लेजोंस के, तो बिल्कुल जाना ना भूलें, वहां पर नीतू मिलेंगी और वहां पर आप बहुत सारी गेम्स होने वाली है, मस्ती होने वाली है और फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो एंजॉय कीजिए आपके गाने और पर सबसे पहले आपको बोलूंगी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।
1: Bolly Brunch, RM2, Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:19 हो चुके हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग हो चुकी है भाई हमारी तरफ से, तो हमने तो सुबह सुबह ही कर दी थी 5 बजे। हमारे सारे आर्टिस्ट आपके साथ होते हैं, बट कई लोग हैं जो कल बहुत काम किया होगा, पार्टी की होगी, मस्ती की होगी और अभी उठ रहे होंगे, तो हम उन सबको भी कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप आ चुके हैं आपके ही रेडियो मस्ती प्रोग्राम में और MBC की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए भाई, हम आज आपको एक इतना प्यारा सा एक टिप देना चाहते हैं। आप एक काम ज़रूर करना, ज़ोर से हंसना जहाँ भी बैठे हो, बेवजह बिना मतलब के, बिना सोचे, बिना टेंशन के सिर्फ हंसो। जब हंसते हैं ना तो एक ऐसी दवाई है जो सीधा बॉडी में काम करती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुस्कुराना तो हम हमेशा बोलते हैं कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ हंसो, पर हंसना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। अरे टेंशनें तो होती रहती हैं, कब नहीं होती हैं, हम तो ज़िंदगी में टेंशनों के साथ ही पले हैं। तो चलिए भाई, टेंशनों के साथ साथ 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। एक प्यारा सा मैसेज आया है कुशाल जी का, जो कि अपने पापा देवराज जी को विश कर रहे हैं। ना तो मुझे पता उनका कोई बर्थडे है या क्या है, ये नहीं बताया उन्होंने, बट ये कह रहे हैं कि पापा आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही प्यारे हो और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक प्यारा सा गाना बजाना चाहता हूँ। तो करुणा अपनी मामा के लिए भी, अनिल कियांज, कुशाल आशीष श्याम विद्यानी भी उनको विश कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट हम ये कह रहे हैं बेस्ट विशेज सर। जो भी है डे, अगर आप है तो आप इस डे को इंजॉय कीजिए, कोई भी इंजॉयमेंट तो बिना मतलब की भी होता है। तो राजन रघुपत जी भी जुड़े हुए हैं लंदन से और वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। चाहे आप मैसेज भेजें ना भेजें, हम आपको विश करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ में हमेशा खुश रहो, इंजॉय करो, और साथ में इतना बस आपको कहूँगी कि ये टाइम आपका है।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:32 हो चुके हैं और तीसरा घंटा चल रहा है, और कहते हैं ना कि जैसे पता नहीं चलता, बस गाने चलते रहते हैं और टाइम निकल जाता है। और मैं भी आपको यही बोलूँगी, बस जाइए थोड़े से सोफ़ा जो है आपका, उसके कशन कवर्स चेंज कीजिए, थोड़ा सा उसका सोफ़ा पे भी अगर कोई कवर है तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है घर का एकदम सा नया सा लगने लगता है और थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है। और कहते हैं ना, जब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है तो खुद ब खुद हाथ भी चलने लगते हैं और एहसास होता है अरे बहुत सारी सफाई करनी, ये भी रह गया वो भी रह गया, तो चलो सफाई कर देते हैं। और ऐसे करते करते पूरा घर चमक उठता है। तो जाइए, और मैं आपके साथ ही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप करते रहोगे काम, और काम करते करते पता नहीं चलेगा कि आपका घर कब साफ हो गया। तो इंजॉय कीजिए आपके गाने, साथ में प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बेल्जियम से, और ब्लेसिंग दे रही हैं सभी को जो भी लिसनर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और कह रहे हैं बस हमेशा खुश रहो।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:38 हो चुके हैं भैया, संडे का दिन है, काम कर लो, वरना सबने बोलना है ये नहीं किया वो नहीं किया, और खुद भी एहसास हो जाता है कि हम नहीं कर पाए। चलो भाई, बहुत सारे गाने तो हमने बहुत चलाए हैं, पर एक प्यारी सी विशेज आई है। बट ये जिन्होंने लिखा है उन्होंने बस इतनी जल्दी में लिखा कि जिसका बर्थडे का है, जिसको विश करना है उसी का नाम नहीं लिखा, पर फिर भी हम कहेंगे आपको मम्मा निर्मला, सिस्टर मीमी एंड अर्चना, नीस प्रजना, प्रेरणा परी, नेफ्यू प्राजीत एंड आर्यन, संदिवेश एंड हर्ष एंड वाइफ रति, सभी विश कर रहे हैं, किसको ये नहीं पता, बट जिनका भी बर्थडे है उनके लिए हम यही कहेंगे, हमेशा खुश रहो, इंजॉय करो, थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट लेके जाना, सारे जने ऐसे ही मत चले जाना, जिसका नाम नहीं भेजा कोई बात नहीं, बट उसका ये तो पता ना घर कहाँ पर है, तो बस जाओ थोड़ा सा कुछ इंजॉय करो, शाम का टाइम है। और जो लोगों ने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है, दोस्तों को मैसेज करो और बोलो कि अरे कोई प्लान कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर कोई ये बोलता है अरे वो नहीं कर रहा तो क्या हो गया, तो उसने नहीं मुझे बताया, वो वहाँ गया था। मत सोचो, थोड़ा सा टाइम है एंजॉय करने का, साथ में हम विश करते हैं इन्हीं को, और बस ये बताते, वो बता रहे हैं कि भाई हैप्पी बर्थडे का गाना जरूर चलाना, तो हम चलाते हैं आपके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:51 हो चुके हैं और मेरा टाइम तो हो गया, लेकिन साथ बने रहिए क्योंकि अभी आने वाली है हंसनी और मजा और भी बढ़ने वाला है। मैं थी आपके साथ पूनम RM2 रेडियो मस्ती के साथ। एंजॉय कीजिएगा अपने संडे और खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: आप सभी को नमस्कार. अच्छा क्यों टाइम दिन के 12 बजे हैं. सुनते हैं समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार अभी.
6: नमस्कार हंसिनी. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है. डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में बदलाव लाया गया है. ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सुरक्षा के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में से है. बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह ने का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा. उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों तथा खादों पर सब्सिडी देना और लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना है. 71 साल के मागी नोएली लोरों और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहराया गया है. उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था. कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थे, जिसकी लागत 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं. इस बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग के भीतर ये चिंता बढ़ गई है और इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की कोशिश कर रहा है. खबरों के अनुसार दो मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पेंटागन के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में इसराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है. ये एजेंसी का सबसे

0: अति गंभीर अलर्ट माना जाता है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 72 साल के 72 years old के श्री सुभाष चंद्र चौधरी जिन्हें सब लोग दागम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 64 रोटे नंबर एक लासूस कैथोबोन में 60 साल के 60 years old के श्री डोमेन दास पुचिगाडू जिन्हें सब लोग गानेसेन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती रूबीना पुचिगाडू के घर नंबर 64 रोटे नंबर 1 लासूस कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: RM2 Radio Musti
3: Love Lounge
2: RM2
4: Radio Musti
3: Love Lounge

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: प्यार किया है तो प्यार को निभाएंगे भी, हर मोड़ पर साथ दिखाएंगे भी. वादा किया है उम्र भर का तुमसे, हर हाल में उसे निभाएंगे भी. प्यार कोई खेल तो नहीं जो हार जाए, प्यार तो वो रिश्ता है जो वक्त के साथ निखर जाए. जिसे दिल से अपना माना हो कभी, उसका साथ आखिरी सांस तक निभाया जाए. यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टे इन लव आज फॉर द वीकेंड वाला शो, दिस इज लव लाउंज. शुरुआत हो गई है, 12:10, इट्स लंच टाइम एज वेल. सो हमारे परिवार जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम. आई विश यू ऑल अ ग्रेट संडे, अ ग्रेट आफ्टरनून. यहाँ पर हंसनी तो आ गई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए. रेडी होप कि सब ठीक है और बेशक इस म्यूजिकल जर्नी को हम सेट करने वाले हैं. और 12:30 तक दैट विल बी लव लाउंज ऑन रेडियो मस्ती. इसके बाद हम जाएंगे प्ले सॉन्ग्स मॉल, जहां पर नितुषा वहां पर है बिल्कुल तैयार रेडी, और हम उनसे मिलने वाले हैं. शी विल बी देयर फॉर अ स्पेशल इवेंट. और वैसे आपको तो पता है जो आजकल का क्रेज है, इट्स द MBC प्ले ऐप, तो उसी इवेंट के लिए वो वहाँ पर होने वाली है फॉर द MBC प्ले ऐप लॉन्च कैंपेन. सो विल बी मीटिंग नितुषा फ्रॉम 12:30. तो यहाँ पर दीजिए हमारा साथ फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी जो हम सेट करने वाले हैं आप लोगों के लिए.
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. Love Lounge.

0: Love Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musti.
0: Love Lounge.
3: Romantic music, that was a romantic feel of love on Radio Musti. Thank you for connecting with the Love Lounge. Abhi nazar se nazar mili to ishq ho gaya, right? Nazar se nazar mili to kya hua? Ishq ho gaya. Dil se dil mila to ek khwab ho gaya. अब जो किया है प्यार तुमसे सच्चे दिल से, अब जो किया है प्यार तुमसे सच्चे दिल से, निभाना ही हमारे जिंदगी का जवाब हो गया है. दिस इज द वंडरफुल 90s आप लोगों के लिए, जस्ट टू एंजॉय दिस वंडरफुल वीकेंड.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti. Radio Musti.
2: दिन के सारे 12 बज चुके हैं. इट्स अ वार्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. यस, और ये वहां पर नितुषा जो बिल्कुल तैयार रेडी फुल जोश में टू हैव दिस वीकेंड इवेंट. यस, द एमबीसी प्ले ऐप लॉन्च जो कैंपेन है इस समय उनके बारे में सारा डिटेल्स वो हमें देने वाली है. चलिए नितुषा से हम मिलेंगे. हेलो नितु, वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. विशिंग यू अ ग्रेट वीकेंड, अ ग्रेट आफ्टरनून.
3: Wish you too a very good afternoon, Hansini, and हमारे जितने listeners इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Sunday afternoon है और आप सोच रहे होंगे नीतू कहाँ पहुँच गई हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा. We've been talking about MBC Play. इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है रेडियो पर, टीवी पर आप सुनते आ रहे हो. And as we all know कि हर चार साल में होता है क्या द वर्ल्ड कप. 2022 में हुआ था वर्ल्ड कप एंड इट्स बैक अगेन इन 2026. एंड ये जो मान्या है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. एंड जब भी हम बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड कप तो जो जोश होता है वो इट्स अ वेरी समथिंग वेरी स्पेशल. तो इसी बात पर एमबीसी प्ले और पिछली बार जब हमने किया था इतने सारे लोगों ने भाग लिया था, इतने सारे लोगों ने जो दिलचस्पी दिखाई थी अबाउट एमबीसी प्ले. इट्स स्लोगन ही, उसका स्लोगन ही कहता है अबेक ऊपर टू, यानी कि एमबीसी हमेशा आपके साथ हर जगह हर तरफ एनीवेयर एवरीवेयर. एंड एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन आज हम है लाइव रेडियो मस्ती टीम फ्रॉम रोजबेल प्लेजेंस मॉल में. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीसी न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एमबीसी प्ले. एंड यहाँ पर हमारी पूरी टीम है. अवि है, मिस्टर दाऊजी हैं, साथ में नवीन भी है, शिव भी है. एंड वी हैव एमबीसी प्ले टीम एरिस हैं, उनकी टीम है बारी बारी, क्योंकि अभी हम लोग आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं अप टिल 3:30 PM ताकि यहाँ पर लोगों को हम इकट्ठा कर सके. काफ़ी लोग आ रहे हैं. दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट्स एमबीसी प्ले, ये कैसा चलता है. वेल, अगर हम आपको कहें कि एमबीसी न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है आप लाइव एमबीसी टीवी देख सकते हैं. आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है. वी आर गोइंग फर्दर फॉरवर्ड एंड आप हर जगह अपने लाइव टीवी देख सकते हैं. यू कैन लिसन टू लाइव रेडियो. हमारे जितने भी रेडियो चैनल्स हैं वो आप सुन सकते हैं. एंड आप जो रिप्ले प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने किसी प्रोग्राम को मिस कर दिया है देन यू कैन एक्सेस रिप्ले प्रोग्राम्स एंड आप एंजॉय कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट डायरेक्टली आपके फोन आपके स्मार्ट टीवी पर. साथ ही साथ यहाँ पर आने का ये जो मकसद है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वी आर एट रोजबेल प्लेजेंस मॉल, यानी कि साउथ में होंगे आप, ईस्ट में होंगे, व्हाटएवर यू माइट बी, आज का दिन आप लोग घूमने फिरने जाते हैं, सो व्हाई नॉट आप यहाँ पर आए. हमारी पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आपकी मदद कर सके. वी कैन हेल्प यू आउट ये जो एमबीसी प्ले के बारे में. और आप काफी लोग सुबह से आए हैं, पूछ रहे हैं व्हाट्स एमबीसी प्ले, ये कैसा होता है, क्या करना चाहिए. सो बारी बारी से हम आप सबको बताते चलेंगे एंड वी कैन हेल्प यू हियर. यहाँ पर हमारी जो टीम है, लेट मी टेल यू, सिडनी है, योवान है, स्टेफान, केंदाल, ग्रेगोरी, दागिल, एरिस, हमारी टीम यहाँ पर है वेटिंग फॉर यू आपकी मदद करने के.

0: के लिए. सो वी कैन हेल्प यू आउट टू डाउनलोड द ऐप और आप अपने जो अकाउंट है डेफिनेटली राइट नाउ क्रिएट कर सकते हैं. प्लस यहाँ पर एवरी जो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन है और सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एंटर हो जाते हैं एक ड्रो में जहाँ जहाँ पर 6 लकी विनर्स विल रिसीव एन एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक. ओ माय गॉड, एक तो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे एंड डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के बाद आप सब्सक्रिप्शन के बाद जो ऑटोमेटिकली आप एक ड्रो में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर 6 लकी विनर्स जो हैं रिसीव करेंगे, मिलेंगे उनको एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक बिफोर द एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. तो फटाफट यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर हमारी टीम आपके साथ है. वी आर वेटिंग फॉर यू एमबीसी प्ले. आजकल सिर्फ जो लेडीज यानी आई मीन जेंट्स फुटबॉल नहीं देखते हैं, पूरा परिवार देखते हैं. सो ये जो मौका है आपके लिए आपको दिया जा रहा है अप टिल 3:30 PM विद देयर योर मस्टी टीम. आप आइएगा यहाँ पर, हमारी पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक होगा, एंटरटेनमेंट होगा, फुल ऑन मस्टी विद एमबीसी प्ले.
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a Musti.

0: Radio Musty.
1: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. यस, रेडियो मस्ती टीम लाइव फ्रॉम रोजबेल प्लेजेंस मॉल, जहां पर लोग आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग अबाउट एमबीसी प्ले. अब एक ऊ पार्ट टू. यस, ये है स्लोगन एमबीसी प्ले का. ये जो न्यू स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं. एज वी ऑल नो, यस, अभी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. तो अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने स्मार्ट टीवी पर लगाना चाहते हैं ये जो ऐप, आइएगा यहाँ पर. हमारे यहाँ बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, सिडने हैं, योआन, स्टेफान, केंडल, ग्रेगोरी, दागिल, दे आर हियर आप लोगों की मदद करने के लिए. आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं. यस, आस्क देम योर क्वेश्चंस. व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट एमबीसी प्ले? ये क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. ये जो कैंपेन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आज, यानी कि एमबीसी प्ले कैंपेन. आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन. जी हाँ, ये जो कैंपेन है, यू कैन डाउनलोड द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन. साथ ही साथ आप एमबीसी प्ले अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. जो एमबीसी प्ले अकाउंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू द अप्रोप्रिएट पैकेज. इट्स अ पैकेज, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना होगा. साथ ही साथ आप जो बेनिफिट्स हैं इनको आप समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड द फीचर्स ऑफ एमबीसी प्ले. धीरे धीरे हम आपको सब बताते चलेंगे. यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, ओ दिस इज एमबीसी प्ले. यस, दिस इज एमबीसी प्ले. साथ ही साथ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं अबाउट दिस एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने एक सर है यहाँ पर, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन लिए आए हैं. एंड द बॉयज़ आर हेल्पिंग आउट. साथ में जो एमबीसी प्ले है आपके लिए, यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है इसके बारे में ऑफ द एमबीसी, ये एमबीसी जो है प्लेटफॉर्म, एमबीसी प्ले न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. एंड ये जो एप्लीकेशन है, इट अलाउज यूजर्स, यानी कि आप जितने भी पब्लिक है जो यूज़ करते हैं, टू एक्सेस एमबीसी कॉन्टेंट. चाहे आप इधर हो, मॉल में हो, बाहर में होंगे, किचन में होंगे, यू माइट बी एनी वेयर, सीसाइड पर होंगे, एनी वेयर. अब एक ऊ पॉट्यू, ये जो स्लोगन है यही हम कहना चाह रहे हैं आपको. एंड डायरेक्टली आपके जो मोबाइल फ़ोन है, आपके टैबलेट हो, या फिर आपके स्मार्ट टीवी, या फिर कोई भी कंपैटिबल डिवाइसेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं. क्योंकि अगर आपको पता नहीं चल रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पर आएंगे. ये जो लड़के हैं, बॉयज हैं, आर हेल्पिंग यू आउट. एंड एमबीसी प्ले ऑफर्स यू व्हाट? लाइव टीवी चैनल्स. जी हाँ, लाइव टीवी चैनल्स, लाइव रेडियो चैनल्स, साथ में वीडियोस ऑन डिमांड.

0: VOD एंड जो रिप्ले कंटेंट है, जैसे कि हमने कहा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और स्पोर्ट्स की बात चल पड़ी है, देन फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि आज फ्रॉम द 11th है ना, अभी आज फ्रॉम 11th थर्सडे से, तो फटाफट आ जाएगा यहाँ पर एंड आप देख सकते हैं एनीवेयर लोकल प्रोडक्शंस, नॉट ओनली स्पोर्ट्स लेकिन जो भी है प्रोग्राम आप देखते हो टीवी पर, एंड अगर आप काम पर होंगे, लेट नाइट ड्यूटी पर होंगे, क्योंकि जो मैचेस होने वाले हैं विदेश में, इट्स गोना बी क्वाइट इम्पॉसिबल शायद, तो आप रिप्ले भी कर सकते हैं, या तो आप काम पर होंगे, टीवी नहीं है लेकिन आपके स्मार्टफोन है, आपके टैबलेट हैं, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच योर प्रोग्राम्स एंड न्यूज प्रोग्राम्स एज वेल। तो ये जो है आपका, जो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर, जी हाँ ऐप स्टोर, आईफोन या फिर आईपैड या फिर गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड। You can have it on Huawei App Gallery and Android TV. So once again, आपको बता रहे हैं कि आज MBC team, RM2 Radio Musti team आपके साथ है up till 3:30 PM for this new streaming platform MBC Play और Utelevision Opus, जैसे कि यहाँ पर मैं स्लोगन देख रही हूँ, या फिर for more information आप directly MBC भी कॉल कर सकते हैं, जो लाइन है लैंडलाइन है 402 with mil 4028 8000 एंड या फिर आप MBC के वेबसाइट www.mbc.mu पर भी फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो स्ट्रीमिंग है, मोर इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, बस आप आ जाइएगा यहाँ पर। एंड आई कैन सी लोड्स ऑफ पीपल आस्किंग, यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन लिए आए हुए हैं, इज़ माई मोबाइल फ़ोन कंपैटिबल, आप यहाँ पर आएँ, जो लड़के हैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हैं ऑलरेडी, सो डू कम ओवर हियर एट होस्टबेल प्लेस ऑन स्मॉल, जहाँ पर RM2 रेडियो मस्ती टीम आपके साथ है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विच इज MBC प्ले। आवेक ऊ पाटू
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Dusty. In the mix. In the mix.
1: And yes, we are live from Roosevelt Place on Small, जहाँ पर MBC's new streaming platform का यहाँ पर launching campaign चल रहा है. And we are here with you till 3:30 PM. और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं. They want to know about MBC Play. What is MBC Play? Yes, यहाँ पर अगर आप MBC Play के बारे में जानना चाहते हैं, you can access replay programs, you can watch TV live, जहाँ पर आप live radio सुन भी सकते हैं. अगर आप enjoy करना चाहते हैं exclusive content डायरेक्टली अपने फोन, अपने स्मार्ट टीवी, अपने आईफोन, अपने टैबलेट से, तो व्हाई नॉट एमबीसी प्ले. क्योंकि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, यानी कि आज फ्रॉम द 11th थर्सडे से सब कुछ शुरू होने वाला है, तो हमारी एक टीम है यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए. टू डाउनलोड ये जो ऐप है एमबीसी प्ले, और आप अपने जो अकाउंट है राइट नाउ क्रिएट कर सकते हैं. प्लस एवरी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली आपको एक लकी ड्रॉ के लिए, यानी कि आप उसमें घुस जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, जहां पर 6 लकी विनर्स जो हैं मिलेंगे उनको एक एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. तो आपको करना क्या है, आइएगा यहां पर अपने मोबाइल फोन को लेकर यहां पर आ जाइएगा. एंड जस्ट फॉर 300, ओनली 300 रुपए के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस होने वाले हैं थ्रू आउट द प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल अवेलेबल ऑन एमबीसी प्ले. जी हाँ, 300 रुपए के लिए, मात्र 300 रुपए के लिए आपको मिल सकता है या एक्सेस कर पाते हो टू द ऑल 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस थ्रू द प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स अवेलेबल ऑन एमबीसी प्ले. यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू हैव एमबीसी प्ले, तो ये जो प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल हैं, इनमें आपको आपके जितने भी 104 मैचेस हैं आप देख पाएंगे लाइव. लाइव नहीं तो रिप्ले आप कर देख पाएंगे. एंड दिस इज वन ऑफ पेमेंट फॉर दिस एंटायर एंड टूर्नामेंट. यानी कि एक ही बारी आपको 300 रुपए पे करना है, बार बार नहीं आपको करना पड़ेगा. एंड देयर इज नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस. डेफिनेटली वंस अगेन, देयर इज नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस. ओनली 300 रुपए आप पे करोगे. यहाँ पर वन ऑफ पेमेंट है इस एंटायर टूर्नामेंट के लिए, और आप एंजॉय कर पाएंगे अपना जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल है, जो मैचेस हैं 104, आप सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे. स्टे वेल ट्यून कनेक्टेड. बस 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, देन म्यूजिक कंटिन्यूज. एंड वी आर लाइव फ्रॉम

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Wish you all a very good afternoon. When I check your time, it's already 1 p.m. Sunte hain sang shuddh samachar, Aditi ke saath, aapko namaskar Aditi.
4: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार. 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ दिनों में शुरू होगी. इससे पूर्व हर साल की तरह कौंजाबल में अम्माटू के कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं. आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए. कटनी का ये नया सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा. फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते, इसके लिए अम्माटू के का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है. इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी. गन्ने की पिराई का काम 22 जून से अल्तेओ और तेगा कारखानों से शुरू हो रही है, जबकि ओमनी केन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा. सैलरी घोटाले के मामले में डीपीपी ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को बैथॉन लार्जेस के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है. इस बात की जानकारी शुक्रवार को इंटरमीडिएट अदालत के समक्ष अपील करने के बाद एफसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील त्रिशूल नागा ने दी. इस मामले में बैथॉन लार्जेस के खिलाफ गलत तरीके से प्रभाव डालने के कम से कम 67 आधिकारिक आरोप दर्ज हैं. कौंदमास में कल शाम एक सड़क दुर्घटना पेश आई. 44 वर्षीय एक चालक द्वारा चलाई जा रही एक बस अनियंत्रित होकर एक दूसरी गाड़ी, एक गैराज की छत, एक बस स्टॉप और कंक्रीट की एक दीवार से जा टकराई. बस लगभग 100 मीटर चलने के बाद रुकी. चालक को हल्की चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया. उस पर किया गया अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव रहा, लेकिन ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया गया कि उसने किसी मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ था. परिवहन मंत्रालय और पुलिस के स्तर पर जांच शुरू की गई है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मध्य पूर्व में तनाव जारी है. अमेरिकी ताकतों ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं जो हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के प्रयास में थे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो युद्ध विराम रद्द कर दिया जाएगा. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार.
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: शोक समाचार सुनिए. ऋषि दयानंद लेन मौला शो में. ऋषि दयानंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 years old श्री सुभाष चंद चौधरी. श्री सुभाष चंद चौधरी जो धर्म नाम से जरा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर

0: अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। जेबेयर रोड रोजबेल में, जेबेयर रोड रोजबेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती माला वीरापेन, श्रीमती माला वीरापेन पैदाशी नाम का नाई जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के मकान जेबेयर रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 64 होता है नंबर एक क्लास उसका थबोन में, नंबर 64 होता है नंबर एक क्लास उसका थबोन में 60 साल के 60 years old श्री धर्मेंद्रास पुटिकादू, श्री धर्मेंद्रास पुटिकादू जो गणेशन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रूबीना पुटिकादू के मकान नंबर 64 गोते नंबर एक लासूस का तबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स। Radio Musty feels a musty in the mix.
2: And of course, we are back from Rosebel Plaisance Mall. यहाँ पर तेरा प्यार हुक्का बार music के साथ मस्ती, मस्ती के साथ you are gathering more and more information about MBC Play. Yes, ou télévision dans Oupus avec Oupa, tu jaise jo slogan hai. And World Cup is just about to kickstart on the 11th, yes, यानी कि थर्सडे को। एंड यहाँ पर हमारी पूरी टीम है और काफ़ी लोग पूछ रहे सवाल, दे वांट टू नो अबाउट व्हाट इज एमबीसी प्ले, क्या करना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। बस आपको यू जस्ट हैव टू पे 300 rupees, 300 rupees आपको बस पे करना है एंड यू गेट एक्सेस टू ऑल 104 जो फीफा वर्ल्ड कप मैचेस होने वाले हैं। जी हाँ, 104 जो मैचेस होने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ लाइव लेकिन आप रिप्ले मोड पर भी देख सकते हैं, चाहे आपके मोबाइल फोन पर हो, आपके आईपैड हो, आपका टैबलेट हो, आपके स्मार्ट टीवी हो, भाई एनीवेयर एवरीवेयर, चाहे टाइम कोई भी हो, सुबह हो शाम हो, अगर आपने मिस कर दिया है रात को तो सुबह को दिन को आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी नींद को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं ना करना चाहते हैं, काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट एनी टाइम एनी वेयर एमबीसी प्ले विद यू। एंड ऑफ कोर्स जस्ट फॉर हर 300 rupees, 300 rupees के लिए यू गेट एक्सेस टू ऑल 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस थ्रू द प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स अवेलेबल ऑन एमबीसी प्ले। आपको करना क्या है, आइएगा यहाँ पर, वी आर लाइव, रेडियो मस्ती टीम आज आपके साथ है, और भी जगह पर होंगे बाकी दिनों में। आज संडे आफ्टरनून है, यू आर गेटिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज, आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बॉयज है जो आपकी मदद कर रहे हैं, सिडनी है, युवान है, स्टेफान है, केंडाल है, ग्रेगोरी है, दागिल है, डेफिनेटली यहाँ पर हमारी पूरी टीम है। एंड आप यहां पर कर सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन जो है आप कर सकते हैं एंड आप एक्सेस पा सकते हो टू द 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस और थ्रू द प्रीमियम, वंस अगेन बार बार कह रहे हैं आपसे, जो प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स है ऑन एमबीसी प्ले। ये एक वन ऑफ पेमेंट है, माने कि आपको बार बार 300 rupees पे नहीं करना होगा, ओनली वंस यू जस्ट हैव टू पे इट वंस ओनली 300 rupees, बस यही हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे क्या करना है, आपके पास मोबाइल फोन है, आर यू कंपैटिबल ओ नॉट, एंड डेफिनेटली कंडीशन अप्लाई। एंड यहाँ पर जो पूरे एंटायर टूर्नामेंट के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं एंड देयर इज नो मंथली, जी हाँ देयर इज नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, सो रेस्ट अश्योर्ड यहाँ पर आइएगा डेफिनेटली एंड आप सक्सेसफुली, जी हाँ ये जो लक वर्ल्ड कप गिफ्ट पैक है इसके बारे में हमने आपको बताया ना कि 6 lucky विनर्स होने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। आप जो है आ सकते हैं यहाँ पर जो हमने आपको कहा, तो डाउनलोड कीजिएगा, जी हाँ एवरी पर्सन हु सक्सेसफुली डाउनलोड्स एमबीसी प्ले, आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे

0: उसके साथ आप परचेज करेंगे वर्ल्ड कप पैकेज। वंस अगेन आपको बता देती हूँ कि वर्ल्ड कप गिफ्ट पैक ड्रॉ के लिए जो 6 लकी विनर्स होंगे, सबसे पहले तो आपको करना होगा, डाउनलोड करना होगा एमबीसी प्ले, देन आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये जो वर्ल्ड कप पैकेज है आप खरीदोगे बस 300 रुपये, एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट रजिस्टर्ड। आपके जो मोबाइल नंबर है वो एक लकी ड्रॉ के लिए एकदम से बराबर एडवांस राइट अवे आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे इनटू अ लकी ड्रॉ। एंड बिफोर यानी कि फीफा वर्ल्ड कप के ख़त्म होने से पहले 6 लकी विनर्स विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम टू रिसीव द एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक एंड ओनली सक्सेसफुली। जी हाँ, जब तक आपने सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं किया है तब तक कुछ होगा नहीं। सो सबसे पहले डाउनलोड कीजिएगा एमबीसी प्ले, देन क्रिएट योर अकाउंट, 300 रुपये पे कीजिएगा, परचेस कीजिएगा यानी कि जो वर्ल्ड कप पैकेज है, एंड डेफिनेटली अपॉन सक्सेसफुली जो आप रजिस्टर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपका नंबर जो है ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा लकी ड्रॉ के लिए। एंड जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके ख़त्म होने से पहले 6 लकी विनर्स विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम to receive an MBC Play gift pack, and only successfully registered users जिन्होंने purchase किया है 300 रुपये का जो World Cup package है will be eligible for the draw. तो आप भी अपना जो luck try कीजिएगा, you don't know आपका luck जो है कब दस्तक दे जाए, lady luck knock knock कर जाए, तो आप आइएगा, सबसे पहले रजिस्टर कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, ओनली 300 रुपये आप पे करेंगे और आपका जो नंबर है मोबाइल फ़ोन का जो नंबर है वो एंटर हो जाएगा, एंड यू कैन बाय एमबीसी प्ले। आप पूछेंगे सवाल, वाई, क्यों भाई मैं क्यों खरीदूँ एमबीसी प्ले? देखो, दो जो रीजंस हैं सो सिंपल, सब के सब 104 मैचेस आप एक भी मिस नहीं करेंगे। यू कैन हैव ऑल द 104 World Cup matches, every match in one place. जी हाँ, every match in one place. It's affordable. Only 300 rupees for the entire tournament. 3000 rupees, थोड़ा मिल रुपी नहीं, only 300 rupees आपसे कह रहे हैं। आप purchase कीजिएगा ये जो World Cup package है, and it's for the entire tournament, जब तक कि World FIFA World Cup ख़त्म ना हो जाए आप लोग बस enjoy कर पाएंगे। साथ ही साथ there's no subscription, like I said, no monthly subscription, it's one off, एक ही बारी आप पे करोगे and it's over, one payment only, no monthly fees, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, and you can watch it anywhere, everywhere, mobile फोन हो, टैबलेट हो, एनी कंपैटिबल स्मार्ट टीवी हो, आप घर पर होंगे या फिर काम पर भी होंगे, आपको मौका मिल जाएगा देखने के लिए डेफिनेटली, एंड यू कैन हैव अ बोनस चांस टू विन एज वेल। सो व्हाई वेटिंग लॉन्ग बाबा, आप आ जाइएगा यहाँ पर, हमारी पूरी टीम है आपके साथ एट रोजवेल प्लेस ऑन स्मॉल फॉर दिस एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन। सो आइएगा यहाँ पर, वी हैव गुड म्यूजिक, हमारी पूरी टीम है आपके साथ। सो पूछिएगा सवाल एंड डेफिनेटली आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा अबाउट एमबीसी प्ले, क्योंकि एमबीसी प्ले इसका स्लोगन ही है, आवेक नू पौटू।
1: RM2 रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musty.
1: आपको क्या लगा हम भी चले गए? बिल्कुल नहीं, हाँ मैं भी हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, एरिस है साथ में, अवि है, शिव है, वी हैव द होल टीम ऑफ एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन एट रोजबेल प्लेस ऑन स्मॉल RM3 रेडियो मस्ती लाइव। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग जानना चाहते हैं, यू वांट टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एमबीसी प्ले। यस, आपके टेलीविजन पर, आपके मोबाइल फोन, आपके स्मार्टफोन पर, आपके आईपैड, आपके टैबलेट पर आप एमबीसी प्ले डेफिनेटली देख सकते हैं। स्पेशली अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है आज फ्रॉम थर्सडे, सो फटाफट, डू नॉट वेट लॉन्गर, आप आ जाएगा यहाँ पर हमारी जो टीम है आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पर आने का जो मकसद है, इट्स अबाउट एमबीसी प्ले एंड एनीवेयर एवरीवेयर आप ये जो मैचेस हैं, 104 मैचेस आप देख पाएंगे लाइव, नहीं तो रीप्ले। एंड डेफिनेटली आपको बस डाउनलोड करना है एप्लीकेशन एमबीसी प्ले, देन आप जो अकाउंट है, create your own MBC Play account, आप सब्सक्राइब करेंगे टू द अप्रोप्रिएट पैकेज, यानी कि जो वर्ल्ड कप पैकेज है, साथ में आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो बार बार हम आपको बता रहे हैं ऑफ MBC Play, साथ में आप कुछ

बेसिक क्वेश्चंस आप यानी कि आंसर करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो एमबीसी प्ले है, अगर आप वंस अगेन अभी तक नहीं जान पाए हैं क्या आप हमें सुन रहे हैं, यू आर अराउंड, हम तो हैं आता रोजबेल यानी कि साथ में प्लेन विलियम्स के रहने वाले, या फिर आप कहीं से भी

0: जो यूजर्स हैं, यू कैन एक्सेस एमबीसी कंटेंट एनीवेयर, जहां भी रहेंगे आप, डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से, अपने टैबलेट, अपने स्मार्ट टीवी या फिर कोई भी कंपैटिबल डिवाइस हो आपके पास, तो आप लाइव टीवी चैनल्स देख पाएंगे. यू कैन हैव लाइव रेडियो चैनल्स, जो रेडियो स्टेशंस हैं, साथ में वीडियो ऑन डिमांड वीओडी. यू कैन रिप्ले योर कंटेंट जो आपने मिस कर दिया हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, साथ में स्पोर्ट्स कंटेंट, यू हैव लोकल प्रोडक्शंस, साथ ही साथ यू हैव न्यूज प्रोग्राम्स, एंड ये सब आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे. तो आइएगा यहाँ पर एट होसबेल, जो शॉपिंग है, जो विलेज हॉल है यहाँ पर, प्लेजांस मॉल है यहाँ पर, आप आ जाइएगा. एंड जो एमबीसी प्ले है, आप सोच रहे होंगे, हम कह रहे हैं अवेलेबल है, लेकिन हाँ कहाँ पर भाई, ऐप स्टोर यानी कि आईफोन या फिर आईपैड पर, यू हैव इट ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड, यू हैव इट ऑन हुआवे ऐप गैलरी एंड एंड्रॉइड टीवी एज वेल. सो आपको करना चाहिए क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, आपको क्रिएट करना होगा एक अकाउंट. जी हाँ, डाउनलोड कीजिएगा एमबीसी प्ले, देन यू क्लिक साइन अप, यू रजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डाउनलोड एमबीसी प्ले, धीरे धीरे कह रहे हैं, ताकि आप लोग अगर यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको करना क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डाउनलोड कीजिएगा एमबीसी प्ले, देन यू क्लिक साइन अप या फिर रजिस्टर, यू एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, आप लॉग इन कीजिएगा टू एक्सेस कॉन्टेंट, देन यू सिलेक्ट एंड परचेज द डिजायर पैकेज यानी कि वर्ल्ड कप पैकेज, सिर्फ 300 रुपए के लिए, ज्यादा नहीं, 1 रुपए कम, 1 रुपए ज्यादा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 300 रुपए के लिए आप यहाँ पर जो पैकेज है खरीद सकते हैं. वंस अगेन आपको रिमाइंड करती हूँ, यू हैव टू डाउनलोड एमबीसी प्ले, देन यू क्लिक साइन अप एंड ओ रजिस्टर, देन यू एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, साथ में आप लॉग इन करेंगे टू एक्सेस कॉन्टेंट, एंड आप सिलेक्ट करके परचेस करेंगे द डिजायर्ड पैकेज. आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो कस्टमर है, हर कस्टमर जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर एंड सब्सक्राइब किया है टू एमबीसी प्ले ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड, आप ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर हो जाएंगे, यानी कि आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है. यू एंटर इनटू अ ड्रो एंड 6 लकी विनर्स को मिलेंगे जो गिफ्ट पैक है, एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक, आपको मिलेंगे एमबीसी गिफ्ट पैक, जो 6 लकी विनर्स हैं. एंड डेफिनेटली दिस प्रमोशन इज एक्सक्लूसिव टू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड सब्सक्राइब्ड एमबीसी प्ले यूजर्स. तो पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यू पे 300 रुपीज. अगर ज्यादा समझ में नहीं आई बात, तो यहाँ पर आइएगा, द बॉयज आर हियर टू हेल्प यू आउट, एंड आप सक्सेसफुली अपॉन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एंड सब्सक्रिप्शन, आप यू मे एंटर द लकी ड्रो, और क्या पता आप लकी विनर भी बन जाए. तो डेफिनेटली अगर आप मोर अपडेट्स चाहते हैं, यू कैन कॉल ऑन 402 with mil, एमबीसी का जो नंबर है लैंडलाइन, वहां से भी आपको मोर अपडेट्स, मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. सो नॉट टू फॉरगेट, आप जितने भी चैनल्स हैं एमबीसी के, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लोकल कंटेंट्स हैं, मॉरिशन प्रोडक्शंस एंड प्रोग्राम्स हैं, या फिर टीवी, रेडियो, डिजिटल कंटेंट जो भी हो, एमबीसी के जरिए आप देख पाएंगे. ये जो एमबीसी प्ले है, इसको आप एंजॉय कर पाएंगे. So do not forget, we are live from Roosevelt Plaisance Mall till 3:30 p.m.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.
2: RM2.
3: Radio Musti.
4: Communiqué depuis le ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère paie un fonds public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bisait enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans le bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.gouvernement.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: Major Musty.
1: In the mix. भाई हम तो कहेंगे छैया छैया हो, सैया सैया हो, या फिर थैया थैया, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जस्ट जॉइन अस एट रोज बेल प्लेस हाउस बोल, जहां पर एमबीसी टीम आपके साथ है, एमबीसी प्ले टीम आवेकुबाटू, और ये जो लॉन्चिंग कैंपेन है शुरू हो चुका है, इट्स अबाउट एमबीसी प्ले। यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पूछ रहे हैं सवाल, व्हाट्स एमबीसी प्ले, ये क्या है। हमारे साथ एक सर है, हेलो जी, नमस्ते
2: जी।
1: तो हर नाम
2: सूरज दुर्गा,
1: कहाँ से आया हुआ?
2: से जमील फोगाशाइड
1: से आया हवन, और वो एमबीसी प्ले के बारे में सुने हुआ?
2: हाँ छोटा भाई।
1: कौन सी जाने खोजा था वो? हाइजा परी आल हवा, स्टेफन तोहर संगे हवा, कौन सी जाने खोजा था वो?
2: जाने के कौन प्रोग्राम को ऐसे मिली हुई, और ये फुटबॉल के बारे में।
1: अच्छा, अभी फुटबॉल शुरू हो, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो, ओकर से आगे तोहर जो फेवरेट टीम है, जो लेकिप है, वो कौन सी है?
2: लालमाई है।
1: लालमाई तो हर लेकिप है। हमके तो बुझाता हम बड़ी जो बार बार अंगलेतिया के गीत हो जाए तो चल हम नहीं देखा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप एमबीसी प्ले के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके साथ है स्टेफन। तो एमबीसी प्ले आपको बस करना क्या है, आपको पता है, आपको सब्सक्राइब करना है, रजिस्टर करना है, 300 रुपये आपको देने हैं। अच्छा, आप फुटबॉल देखेंगे, हर मैच देखेंगे आप?
2: सब नहीं, जन इम्पोर्टेंट है वही,
1: यानी कि जहाँ जहाँ लालमाई खेली हौजे परी दू देखबा। अब धरला रात के जो तोहर लेकी वो खेला था तोहरा लेता नहीं मिलल, तो है जो एमबीसी प्लेवा बा एकर संगे तू सकबा अपन मैच के रिप्ले मोड में देखे, तोहरा खुशी होए?
2: जी हाँ।
1: हजीर हो, सांझ हो, तू सगबा जा देखे। तो जितना जना अभी तोहरा सुनत हवन, चाची संगे आयल हवा, तो चाची संगे परिवार संगे आयल हवा, सब कोई संगे देख किया?
2: सब लोग संगे ना,
1: खाली बुढ़िया संगे देखबा। तो चला ये जो मौका हुआ बाटे एमबीसी प्ले परिवार संगे, तोहर लड़का फैका हो, तोहर दोस्त संगे घरे रहबा, जैसे कि बोले हुआ लालमाई तोहर लेकिप है, तो जे सांझ हो, फजीर हो, जे मौका नहीं मिली तो सगबा रिप्ले करके देखे, और कहूँ भी रहबा तोहर लसम में रहबा, लकुजिन में रहबा, ट्वालेट में रहबा, सगबा देखे है, नो प्रॉब्लम नहीं भाई में। तो चला बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दुर्गा, और यहाँ पर स्टेफन तोहर मदद खातिर आल हवन, और तोहर मोबाइल फोन हवन। तो मैं मांग करूँगी जितने भी लोग यहाँ पर हमको सुन रहे हैं, हाँ जी, आप लोग भी अपने फेवरेट टीम को देखना चाहते हैं, मिस बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन यहाँ पर शुरू हो चुका है, आप आ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पे 300 रुपीज ओनली, 300 रुपीज एंड नो मंथली फीस। हाँ, एक ही बारी वन ऑफ है ये, आप एक ही बार पे करोगे 300 रुपीज, एंड आप जो 104 का जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के लिए, आप सब, यस जी, नमस्ते भाई, आप आल हवा तो चल तनि सुन तोहरों से हमने बचाया जब बुट पूछा पहन के, कैसे भाई? नमस्ते।
3: नमस्ते हमर बहन नीतू झाल जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद है जो परी आल हवा। अभी हमने एमबीसी प्ले के बारे में फुटबॉल देखबा जब वर्ल्ड कप शुरू हो।
3: हाँ, फुटबॉल देखिला, फुटबॉल स्वीप करिला, सब पहुंचे लुमोन के।
1: अभी तो शुरू हो जाए, तो हर फेवरेट टीम को जी
3: अंग्ले
1: अंग्लेते तू हूँ अंग्लेते अब तेरी बारी जो अंग्लेते बाऊ चल अच्छा बात बाटे। अच्छा, एमबीसी प्ले के बारे में सुन ले हवा?
3: नहीं नहीं, हम भी सुना चाहे, हम तो में है, हम आइला पापा तनी सुने को लामोस करे कोई नहीं, तो अभी बुढ़िया बा बाजार में बिचत हुआ
1: बाजार में ठेला ठली हुआ था हौजा परी, तो हजा परी आल हवा देखा हमने के टीम बाटे, स्टेफन हवे हजा हवन, मिस्टर दुर्गा संगे और भी छोकरा हवन जा हजा परी तोहर मदद करे खातिर, जे तोहर मोबाइल बाटे जे चाहत हुआ जो सॉन्ग का 104 जो मैचेस बाटे फीफा वर्ल्ड कप जो अभी शुरू हो, तो नहीं भुलाइया हजा परी तोहर मोबाइल फोन तोहर पोता लेके चलैया, ये लोग तोहरा बोल हजे परी सब कुछ हो। स्टेफन बा हमर सामने अभी बगल में बाटे, 300 रुपये पे करबा, एक ही हला पे करबा, तब जो बातें तू सब्सक्राइब होबा, सब्सक्रिप्शन करबा, जो रजिस्टर होबा, तो का पता जो न छाओ लकी विनर्स बातें जो विनर्स होवन जा, उमें तोहर नाम चलाए तोहर सब देता है, वो लोग लियन जा, और वो जो कार्डो बातें पैकेज जो बातें तोहरा सकेला मिले एगो गिफ्ट एमबीसी प्ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्ते, शुभ दिन।
3: नमस्ते, शुभ दिन,
1: बहुत धन्यवाद। तो चले यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, और भी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और म्यूजिक हो जाए भाई।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Celesti.
1: In the mix.
2: Oh my God, what a lovely gana. Soothing music only for you, आपके दिल को सहलाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग को एकदम झनकारने के लिए. Yes, we are talking about MBC Play. And MBC Play, ये जो streaming platform है MBC का, and it's the launch campaign, definitely. We are live from Rosebel Place on Small, जहाँ पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, and they are getting themselves registered, subscribe हो रहे हैं. You just have to play 300, यानी कि you have to pay 300 rupees and one off है, no monthly fees. Once you pay 300 rupees, आप register हो जाते हैं, subscribe हो जाते हैं with your details and to help you out, यहाँ पर एक team है, तैनात है आपके लिए, आपकी मदद के लिए. So ये जो है MBC Play, जी हाँ, MBC Play support team जो है 402 with mil पर भी आप phone कर सकते हैं for more information. लेकिन अगर आप इधर ही हैं, at Rosebel Mall में हैं, आस पड़ोस में हैं, then why not, it's an opportunity, आप यहाँ पर आ सकते हैं और MBC Play जो प्लेटफॉर्म है, आप उसको जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना मोबाइल फ़ोन, अपना टैबलेट, आईपैड हो या फिर स्मार्ट टीवी के लिए, डेफिनेटली आप यहाँ पर कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये जो स्लोगन है, कंपेन स्लोगन है, अवे कूप और टू MBC Play एंड वर्ल्ड कप कंपेन जो है 104 मैचेस, अवे कूप और टू. एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको करना क्या है, बार बार आपसे कह रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है. यू जस्ट हैव टू पे 300 रुपीज, 300 रुपी ओनली, और आपको मिलता है एक्सेस फॉर ऑल 104 फीफा वर्ल्ड मैचेस थ्रू द प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स जो MBC Play पर अवेलेबल है. और ये जो वन ऑफ पेमेंट है, एंटायर टूर्नामेंट यानी कि शुरू होने वाले हैं 39 डेज, यानी कि आपके पास 39 दिन है ये जो फुटबॉल मैचेस आप देख पाएंगे, 104 फुटबॉल मैचेस सब लाइव देख पाएंगे, लाइव नहीं तो रिप्ले देख पाएंगे. एंड एनीवेयर वेयर एवर यू माइट बी, इसके लिए नो सब्सक्रिप्शन फीस है आपके लिए, only one payment only and no recurring charges, no monthly subscription. 11 June se lekar 19 July, yani ki 11th June se lekar 19th July 2026, ye jo 39 days of World Cup football chalne wala hai, iske liye jo play MBC Play app hai, isko aap definitely aapke paas hoga. Anywhere आप देख पाएंगे जो matches हैं, आप घर पर होंगे, सोते सोते देख पाएंगे, anywhere, किचन में होंगे, बेडरूम में होंगे, बाहर होंगे, seaside beaches पर, जहाँ भी रहेंगे भाई, MBC Play only for you. And आप जितने भी matches हैं आप सब follow कर पाएंगे, access कर पाएंगे, specially जो आप access कर पाएंगे to the premium new world sports channels, जी हाँ, new premium new world TV sports channels, इसको आप access कर पाएंगे इस MBC Play के साथ. तो एक ऐसा मौका है जो आप देख पाएंगे, लिसन कर सकते हैं, ना सिर्फ देख पाएंगे, यस वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, लेकिन आप जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, लाइव रेडियो आप फॉलो कर पाएंगे, देख पाएंगे, बीट RM1, RM2, कूल FM, यानी कि MBC जो रेडियोज हैं, डेफिनेटली आप सब देख पाएंगे, सुन पाएंगे. एंड जितने भी MBC चैनल्स हैं, इस ऐप के ज़रिए से आप उनको फॉलो कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे. एंड अगर आप कैचअप करना चाहते हैं, कैचअप भी है, ये जो रिप्ले जो मोड है, आप अपने प्रोग्राम्स जिनको आपने मिस कर दिया है, इतने सारे लोकल प्रोडक्शंस हैं हमारे, मॉरिशन प्रोडक्शंस प्रोग्राम्स हैं, एंड वन प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट, ऑल इन वन प्लेस. इसलिए यहाँ पर जो लॉन्च कैंपेन है आप तक यहाँ पर पहुँच रही है. बस फटाफट आपको याद दिला देते हैं कि 2 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद विल बी बैक फ्रॉम Rosebel प्लेस ऑन स्मॉल. RM2

0: Radio Musty.
1: Hot lights go black.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: RM2 Radio Musty.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
5: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस दुनिया का प्रथम चीनी उत्पादक देश बनने की राह पर है, जहां की सभी कारखानों को बोंसिको का सर्टिफिकेशन प्राप्त है। ये आधिकारिक सर्टिफिकेशन स्थिरता की गारंटी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण की सुरक्षा के अनुकूल है। ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते लगे बोंसिको इंस्पायर अवार्ड्स 2026 के अंतर्गत शुगर सिंडिकेट की खास प्रशंसा की गई। 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ ही दिनों में शुरू होगी। इससे पूर्व हर साल की तरह कौंजाब में अम्मा तुके कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए। कटनी का ये नया सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते, इसके लिए अमातुके का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है। इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी। गन्ने की पेड़ाई का काम 22 जून स्यालतेओ और 13 कारखानों से शुरू हो रही है, जबकि ओमनिकेन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा। सैलरी घोटाले के मामले में डीबीपी ने एफसीसी को बेथॉन लाजेस के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को इंटरमीडिएट अदालत के समक्ष अपील करने के बाद एफसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील त्रिशूल नागा ने दी। इस मामले में बेथॉन लाजेस के खिलाफ गलत तरीके से प्रभाव डालने के कम 67 आधिकारिक आरोप दर्ज हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मध्य अफ्रीका में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं, जिससे ये प्रकोप हाल के सालों के सबसे गंभीर इबोला संकटों में शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य एजेंसियां संक्रमण को रोकने के लिए निगरानी, जांच और रोकथाम के प्रयास तेज कर रही हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। स्टीवेंसन रोजिल में 66 साल के 66 years old जनाब अलीबाई हुसैन बकस, जनाब अलीबाई हुसैन बकस जो गोरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे इनके मकान स्टीवेंसन रोजिल से उठा कर दफनाने के लिए पैंदीदाम का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोगा में 53 साल के 53 years old श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी माँ श्रीमती बिंदु भरत के मकान भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. RM2
0: Radio.

0: Radio Musty.
1: In the mix. देखो भाई भन ठंड की चली आई मैं भी एट रोजबेल प्लेस ऑफ स्मॉल फॉर द एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन एंड यहाँ पर RM2 रेडियो मस्ती टीम आपके साथ है एंड लोड्स ऑफ पीपल गैदरिंग पूछ रही है सवाल व्हाट्स एमबीसी प्ले हम भी आपको बता रहे हैं अगर ज्यादा समझ नहीं पा रही है देन वी हैव द हैंडसम बॉयज वी हैव सिडनी योवान स्टेफान केंडल ग्रेगोरी डारिल यहाँ पर हैं आपकी मदद के लिए तो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कैन वी लाइक जब इसको हम सब्सक्राइब करेंगे अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हमको भी मौका मिलेगा डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा भाई लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा सो आपको असिस्ट करने के लिए रजिस्टर एंड सब्सक्राइब करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉयज हैंडसम बॉयज आपकी मदद करने आ रहे हैं ताकि आप भी एमबीसी प्ले के जरिए एमबीसी प्ले ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है एमबीसी का इसके जरिए जो पूरे 104 सॉन्ग का जो फुटबॉल मैचेस है फीफा वर्ल्ड कप डेफिनेटली आप अपने फेवरेट टीम को मिस नहीं करना चाहेंगे तो एमबीसी प्ले जो है आप उसको डाउनलोड कीजिएगा रजिस्टर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ओनली 300 रुपीज इससे ज़्यादा नहीं ओनली 300 रुपीज 300 रुपये में आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आप देंगे जो बॉयज़ हैं आपकी मदद के लिए यू टेक योर मोबाइल फ़ोन अलॉन्ग एंड चाहे आपके टैबलेट हो आईपैड हो या फिर स्मार्ट टीवी के लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको सब जानकारियाँ मिल जाएंगी एंड डेफिनेटली जो हर कस्टमर जो सक्सेसफुली रजिस्टर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे टू एमबीसी प्ले ज्यूरिंग दिस कैंपेन यानी कि ज्यूरिंग दिस कैंपेन पीरियड ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा एक लो ड्रॉ के लिए आपका नाम इसमें आ जाएगा एंड जितने देर आप ये जो फुटबॉल मैचेस देखेंगे आई मीन फीफा वर्ल्ड कप इसके ख़त्म होने से पहले ही जो 6 विनर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू अ रैंडम ड्रॉ जी हाँ एंड आप क्या पता आपको मिल सकता है एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक और 6 मिलेंगे आपको 6 विनर्स को मिलेंगे और ये जो प्रमोशन है

0: is exclusive to successfully registered and subscribed MBC Play users. तो जैसे कि हमने कहा, आप लोग कहाँ कर सकते हैं, यानी कि where can you download MBC Play? आपके हैं App Store, यानी कि MBC Play जो है अवेलेबल है ऑन App Store, आपके iPhone, आपके iPad, नहीं तो Android, यानी कि Google Play Store. You can have it on Huawei App Gallery and Android TV पर भी. आपको करना क्या चाहिए, बार बार आपको बता रहे हैं. You have to create, अपने एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए you download MBC Play. MBC Play ये जो ऐप है डाउनलोड कीजिएगा, क्लिक साइन अप या फिर रजिस्टर. आप अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर कीजिएगा, देन यू लॉग इन टू एक्सेस कंटेंट. इट्स सो सिंपल है. एंड यहाँ पर सिलेक्ट एंड परचेज कीजिएगा द डिजायर्ड पैकेज, यानी कि जो वर्ल्ड कप पैकेज है आप इसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. यस सर, यहाँ पर और भी है, यहाँ पर हमारी टीम है एमबीसी प्ले टीम. अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कट सौदे विथ मिल पर भी फ़ोन कर सकते हैं. एंड इस प्ले, ये जो एमबीसी प्ले है, जो न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसमें आप जो है लाइव टीवी चैनल्स देख पाएंगे, लाइव रेडियो स्टेशन सुन पाएंगे, वीडियो ऑन डिमांड, यू कैन रिप्ले योर कंटेंट, यू कैन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेंगे, स्पोर्ट्स कंटेंट, लोकल प्रोडक्शंस भी होंगे, यानी कि जितने भी चीज़ें आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं एमबीसी के जरिए, जो न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं उन सबको आप फॉलो कर पाएंगे. सो वंस अगेन, ये जो कैंपेन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी मदद हो पाए एमबीसी प्ले जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सके. सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन, क्रिएट योर एमबीसी प्ले अकाउंट, सब्सक्राइब टू द अप्रोप्रिएट पैकेज, यानी कि जो वर्ल्ड कप है स्पेशली आप जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे, जो फीचर्स हैं एमबीसी प्ले के, साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस एप्लीकेशन के बारे में. एंड और आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन द लकी ड्रॉ, जो आपके गिफ्ट पैक हैं एमबीसी प्ले के वो आपको मिल सकते हैं. सो व्हाई नॉट इसका फ़ायदा पूरा आप उठा सकते हैं. बस 300 भाई, 300 में आजकल तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन 300 में आपको 104 जो फीफा वर्ल्ड कप मैचेस है पूरे के पूरे आप देख पाएंगे एनीवेयर, जैसे कि इनका कैंपेन ही है पॉटू जो एमबीसी प्ले है. तो आप डाउनलोड कीजिएगा एंड एन्जॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले होंगे कोपे कोपिंग के साथ, जिसके भी आप साथ रहेंगे आप अपने फेवरेट मैचेस, अपने फेवरेट टीम्स को देख पाएंगे. एंड वंस अगेन, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे ऐसे जो माने कि जो एडवांटेजेस हैं, एंड नो मंथली सब्सक्रिप्शन, नो रिकरिंग चार्जेस, ओनली वन पेमेंट और कवरेज थ्रू आउट द टूर्नामेंट पीरियड, यानी कि 11 से 19 जुलाई तक आप देख पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे. सिर्फ 300, यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, दे आर ऑल एंथुसियास्ट. एंड यस, अबाउट फुटबॉल मैचेस, वी ऑल नो कि मॉरिशियन पीपल फॉन्ड ऑफ पीपल ऑफ मैचेस, फुटबॉल मैचेस, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे. डेफिनेटली जस्ट फॉर 300 रुपीज आप एक्सेस कर पाएंगे जितने भी 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस है थ्रू दिस प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल अवेलेबल ऑन एमबीसी प्ले.
1: RM2 Radio Musty feels a musty.

इससे पहले कि और कोई गलती हो जाए बस लेट मी रिमाइंड यू कि वी आर लाइव फ्रॉम होजबेल जो शॉपिंग मॉल है यहाँ पर जी हाँ प्लेस हाउस मॉल शुड आई से एंड वी आर हियर फॉर द एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन एंड लगभग एक और घंटा हम आपके साथ रहेंगे और एम टू टीम थैंक यू सो मच लोड्स एंड लोड्स ऑफ पीपल कमिंग अराउंड एंड पूछ रहे हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस एमबीसी प्ले जो प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है एंड डेफिनेटली सब कोई वेट कर रहे हैं कि कब फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो जाए एंड वे लोग एंजॉय कर पाएंगे जो 104 फुटबॉल मैचेस हैं अपने फेवरेट टीम को देख पाएंगे लाइव नहीं तो रिप्ले मोड पर एंड जितनी भी प्रोग्राम्स है लोकल इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम्स है लाइव रेडियो जो स्टेशंस हैं सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अब एमबीसी प्ले एंड आवे कू पाचू जैसे कि इसका स्लोगन ही है एंड टेलीविजन द उपस जैसे कि हम कह रहे हैं बीच आपके आईपैड है यू हैव योर टैबलेट हाँ टीवी तो आप लेकर चलेंगे नहीं घर पर देख पाएंगे या फिर काम पर भी शायद देख पाएंगे थोड़ा सा वक्त निकाल कर फॉलो कर पाएंगे या फिर अपने मोबाइल फोन पर भी रिप्ले मोड पर यू जस्ट हैव टू डाउनलोड जो एमबीसी प्ले है अपना अकाउंट आप क्रिएट कीजिएगा ये जो वर्ल्ड कप पैकेज है आप उसको खरीदिएगा परचेस कीजिएगा एट द प्राइस ऑफ 300 rupees ओनली 300 rupees ओनली बाबा बस आपको ये चुकाना होगा वन ऑफ है हा? बार बार आपको पे नहीं करना होगा जैसे कि हम भी बार बार कह रहे हैं आपसे एंड ओनली वंस नो मंथली फीस जैसे कि आप अपने जो फुटबॉल मैचेस हैं देख पाएंगे एंड जब तक कि ये फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म ना हो जाए इससे पहले 6 लकी विनर्स जो मिलेंगे उनको सिलेक्ट किए जाएंगे और एक लकी ड्रॉ के बाद आपको मिल सकता है

है, यू कैन विन एन एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक, एंड बस आपको रजिस्टर करना होगा, सब्सक्राइब होना होगा सक्सेसफुली, एंड अपॉन परचेसिंग 300 रुपीज का ये जो पैकेज है तब आप एलिजिबल हो सकते हैं. सो वंस अगेन, रीजंस आप पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों, हम भी आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि 104 मैचेस आपको सब

0: चैनल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके एमबीसी प्ले आपके साथ आपके पास है, wherever you might be. Every match, one place, 300 रुपए वंस एंटायर टूर्नामेंट के लिए जो 39 डेज है, यानी कि 11th जून से लेकर 19th जो जुलाई तक है 2026 ऑफ कोर्स, जो 39 डेज फीफा वर्ल्ड कप होगा, आप उनको सब फॉलो कर पाएंगे. एंड नो सब्सक्रिप्शन वंस अगेन, ओनली वन पेमेंट, नो मंथली फीस, 300 रुपए फटाफट बाउ हो गया. एंड यू कैन वॉच इट एनीवेयर एवरीवेयर, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, या फिर कोई भी कंपैटिबल स्मार्ट टीवी हो. एंड जो बोनस चांस टू विन एवरी सक्सेसफुल पैकेज परचेस, जो कस्टमर है यू एंटर इनटू द एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक ड्रॉ, तो बस ये जो मौका है आपको गवाना बिल्कुल नहीं है. एंड यहाँ पर क्या बात है, हमारे भाई जो है आ गए हैं, उन्होंने भी रजिस्टर किया, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लकी विनर बनेंगे या नहीं, ये तो ऊपर वाले की बात है. लेकिन हाँ, जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे, जब तक आप जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं. सो डाउनलोड, सब्सक्राइब योर सेल्फ, रजिस्टर एंड विन द चांस टू विन द जो एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक है. तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी मदद के लिए एमबीसी प्ले जो टीम है यहाँ पर आपकी मदद कर रही है. काफ़ी लोग आ रहे हैं, जब से हम आए हैं देख रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, एंड दे आर हैविंग योर मोबाइल फ़ोन उनकी मदद करने के लिए. वी हैव द बॉयज, यहाँ पर स्टेफान है, योवान है, साथ में केंदाल, ग्रेगोरी, दागिल है, हमारी पूरी टीम है आपके साथ अप टिल 3:30 PM. और भी दिन आए दिन हम और भी ऐसे कैंपेन्स करेंगे आप सबकी मदद करने के लिए, ताकि हर कोई जो है एंजॉय कर पाए, कोई भी पीछा न रह पाए इस एमबीसी प्ले का. ये जो ऐप है, स्ट्रीमिंग ऐप है, इससे आप छूटे न रहे, इससे आप वंचित न रहे, एंड आप एंजॉय कर सकते हैं द 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Mesty.
1: In the mix.
2: And of course, जिंदगी दो पल की है तो बस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ एंड फुटबॉल के साथ विद एमबीसी आप जिंदगी को काट सकते हैं आराम से. आई मीन ये जो लॉन्च कैंपेन है एमबीसी प्ले का, वी आर लाइव फ्रॉम रोजबेल प्लेस ऑन स्मॉल. अभी तो टाइम है बाकी और यहाँ पर आप आ सकते हैं. स्टिल वी हैव ऑल द छोकरा सिडनी, योवान, स्टेफान, केंडल, ग्रेगोरी, दागिल हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी मदद करने के लिए. इफ यू वांट टू नो ऑल अबाउट एमबीसी प्ले, हम भी बार बार कहे जा रहे हैं ये जो न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ द एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एमबीसी प्ले, इससे आप जितने भी एमबीसी टीवी चैनल्स हैं, रेडियो हो, टीवी हो, आप एक्सेस कर पाओगे व्हाटएवर यू माइट बी. चाहे आप घर पर होंगे, घर के बाहर, बीच पर होंगे, किसी के साथ आप घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी होंगे, एनीवेयर एनी टाइम अवेकू टू, जैसे कि यहाँ पर जो स्लोगन है वो टेलीविजन पर्स, यस मोबाइल फोन के जरिए, यू हैव योर आईपैड, यू हैव योर टैबलेट, कहीं से भी आप, स्पेशली अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है आज फ्रॉम द 11th यानी कि थर्सडे को शुरू होगा एंड डेफिनेटली आप अपने मैचेस को मिस नहीं करना चाहेंगे. तो जितने भी लाइव टीवी चैनल्स हैं, लाइव डिमांड रिप्ले कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट, स्पोर्ट्स कंटेंट, लोकल प्रोडक्शन एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स आप देख पाएंगे एंड ये जो एमबीसी प्ले है इट ऑफर्स यू ऑल दिस जो भी हमने अभी बात की है. इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, बीट ऑन ऐप स्टोर, आईफोन हो या फिर आईपैड, आपके लिए

0: एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर या फिर हुआवे गैलरी एंड्रॉइड टीवी, यहाँ पर सब आप लोग देख पा रहे हैं। बच्चे लोग भी आ रहे हैं, हाय ये सब कह रहे हैं यहाँ पर। ओके तो चलिए यहाँ पर काम करते करते बच्चे लोग, हाय किड्स, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: जामेल।
0: जामेल वेयर आर यू फ्रॉम? ये तो भाग गया, जामेल भाग गया, कोई बात नहीं। ये लेकिन जब फुटबॉल मैचेस देखने की बारी आएंगे स्कूल के बाद, डेफिनेटली ये लोग भी रिप्ले मोड पर देख पाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, डाउनलोड एमबीसी प्ले, क्लिक साइन अप, रजिस्टर, एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, लॉग इन टू एक्सेस कॉन्टेंट एंड प्लीज आप सिलेक्ट करके परचेज कर पाएंगे द डिजायर्ड पैकेज। और अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड कप पैकेज, और 300 रुपये, सिर्फ ओनली 300 रुपीज में आप ये जो है खरीद सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको जितने भी कस्टमर हैं सक्सेसफुली आप रजिस्टर कर पाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे टू एमबीसी प्ले ड्यूरिंग द एंटायर कैंपेन, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके जो मोबाइल फोन है रजिस्टर हो जाएगा एंड यू एंटर इन टू अ ड्रो, लकी ड्रो, जहाँ पर 6 हमारे जो लकी विनर्स हैं इनको मिलेंगे एमबीसी प्ले गिफ्ट पैक। ये जो पैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको रजिस्टर करना है, सब्सक्राइब करना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर और भी अपडेट्स आप जानना चाहते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप देख पाएंगे, कैसे आप एंजॉय कर पाएंगे, सो यू जस्ट हैव टू कम हियर एट प्लेजेंस मॉल। अगर जो बाकी दिन हैं बाद में, अभी और भी हमारी टीम जाने वाली है जगह जगह पर आप सबकी हेल्प करने के लिए विद आवर एमबीसी प्ले टीम। और आप अपने जो फुटबॉल मैचेस हैं 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस आप देख पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे एनीवेयर एनी टाइम। एंड ऑफ कोर्स बस 300 रुपये, जी हाँ 300 रुपये, नो मंथली सब्सक्रिप्शन, नो रिकरिंग चार्जेस, ये हैं वन ऑफ, एक ही बारी 300 रुपये आप पे करोगे, सब्सक्राइब करोगे एंड अवेलेबल कर पाएंगे जो प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स हैं ऑन एमबीसी प्ले थ्रू आर द फीफा वर्ल्ड कप आप एंजॉय कर पाएंगे। हम भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं भाई, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, एरिस है, पूरे जो छोकरे बैंड है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, सुनते हैं रेडियो पर, आज लाइव देख भी पा रहे हैं, तो यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। दिस इज़ आवर फैमिली, मॉरिशन फैमिली, और मॉरिशन फैमिली हमेशा एंजॉय करते हैं फुटबॉल मैचेस। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है, वो लोग पसंद करते हैं इंग्लैंड की टीम, कोई लालमाई यानी कि जो न्यूजीलैंड पसंद करते हैं, कोई अफ्रीका पसंद करते हैं, अफ्रीका में तो बहुत सारी और टीम्स हैं, कोई फ्रांस, कोई ब्राज़ील, भाई कौन किसकी टीम में है ये तो हमको पता बाद में चलेगा, लेकिन हाँ जब तक आप लोग रजिस्टर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आप ये जो लकी ड्रो है उसमें आप एंटर नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू, आप रजिस्टर हो जाए, सब्सक्राइब हो जाए एंड आप एंजॉय कर सकते हैं एमबीसी प्ले, व्हाटएवर यू माइट बी।
2: यू आर लिसनिंग टू आरएन2 रेडियो मस्ती।

0: Musty.
1: हम तो कहेंगे दीदी हो, भैया हो, चाचा हो, चाची हो, सब लोग फुटबॉल पसंद करते हैं. देन व्हाई नॉट एमबीसी प्ले के जरिए आप अपने 104 मैचेस नहीं तो अपने जो लोकल प्रोडक्शंस है, आप एमबीसी टीवी के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, जितने भी लोकल प्रोडक्शंस हैं, जितने भी न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, आप उनको फॉलो कर पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे. लाइव नहीं तो आप रिप्ले मोड पर भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे. एंड येस, वंस अगेन वी आर लाइव फ्रॉम रोजबेल प्लेस ऑन स्मॉल, जहाँ पर एमबीसी प्ले लॉन्च कैंपेन चल रहा है. एंड रेडियो मस्ती टीम आपके साथ अब टिल 3:30 PM. तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्लीज डू कम. अगर आप फुटबॉल के चाहने वाले हैं, यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ योर मैचेस, आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर हमारी जो टीम है आपकी मदद करने के लिए, आपको हेल्प पहुँचाने के लिए कि कैसे आप इस एमबीसी प्ले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप रजिस्टर कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे. और अपॉन सब्सक्रिप्शन यू जस्ट हैव टू प्ले ओनली वंस, एक ही बारी 300 रुपये, एंड नो मंथली चार्जेस हैं. अगर आपको लगता है कि हर महीना आपसे मांगे जाएंगे पैसे, बिल्कुल नहीं.

0: एक ही बारी आपको 300 रुपए पे करना होगा एंड यू स्टैंड अ चांस टू विन जो गिफ्ट है एमबीसी प्ले जो गिफ्ट पैक है आप विन कर सकते हैं, यानी कि 6 लकी विनर्स होंगे लकी ड्रॉ के बाद. सो वंस अगेन ये जो पैकेज है इट इंक्लूड्स 104 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस एंड यू कैन एक्सेस टू प्रीमियम न्यू वर्ल्ड टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स जितने भी कवरेज है थ्रू आउट द एंटायर पीरियड, यानी कि टूर्नामेंट फुटबॉल पीरियड है. One payment only, no monthly subscription, no recurring charges. And ये 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा, जब तक ये जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है ख़त्म ना हो जाए. सो मेक इट अ मस्ट, फटाफट आ जाएगा यहाँ पर. आज नहीं, कल परसों और भी दिन होंगे जहाँ पर हमारी टीम आपके साथ जुड़े रह पाएंगे, जहाँ पर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे. सक्सेसफुली आपको करना क्या है फॉर द वर्ल्ड कप गिफ्ट पैक ड्रो, एवरी पर्सन जितने भी लोग सक्सेसफुली डाउनलोड करेंगे एमबीसी प्ले, साथ में जो क्रिएट करेंगे अपना एक अकाउंट, आप परचेस करेंगे ये जो वर्ल्ड कप पैकेज है फॉर 300 रुपीज़ ओनली, एंड आप ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा फॉर अ लकी ड्रो. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि इट्स अफोर्डेबल, ते बस 300 रुपये, जी हाँ 300 रुपये में आप क्या कर सकती हैं आजकल जैसे कहते हैं, लेकिन 300 रुपये में आप उन जो 39 डेज ऑफ फुटबॉल मैचेस आप एंजॉय कर सकते हैं. इट्स अफोर्डेबल एंड एवरी मैच इन वन प्लेस, जहाँ भी आप रहेंगे जितने भी फुटबॉल मैचेस हैं आप उनको एंजॉय कर पाएंगे, लाइव नहीं तो रिप्ले मोड पर देख पाएंगे, घर पर नहीं तो बाहर ही सही, बाहर नहीं कहीं और तो होंगे लेकिन आप फॉलो कर पाएंगे. एंड यू कैन वॉच इट ऑन योर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या फिर एनी कंपैटिबल स्मार्ट टीवी. तो यहाँ पर हमारी टीम आपका इंतज़ार कर रही है एंड डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाएंगे. एंड ये जो है कट्स ऑन द विद मिल, ये एमबीसी जो प्ले सपोर्ट है आप रिफ़र कर सकते हैं टू अवर कस्टमर्स, यानी कि जो एमबीसी जो नंबर है कट्स ऑन द विद मिल पर आप फ़ोन कर सकते हैं किसी भी मदद के लिए अबाउट दिस एमबीसी प्ले. तो जस्ट कॉल अपॉन दिस नंबर कट्स ऑन द विद मिल, आपका काम धीरे धीरे होते चला जाएगा. वंस अगेन ये जो कैंपेन है इसका स्लोगन है एमबीसी प्ले, आप एक ऊ पर टू एंड 104 मैचेस आप हर तरफ होंगे, एनीवेयर एनी टाइम आप अपने फुटबॉल मैचेस को या फिर अपने प्रोग्राम्स को देख पाएंगे डाउनलोड करके, सब्सक्राइब करके, एंड आप एंजॉय कर पाएंगे द 104 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस.
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2.
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार. मॉरिशस दुनिया का प्रथम चीनी उत्पादक देश बनने की राह पर है, जहां ये सभी कारखानों को बोंसिखो का सर्टिफिकेशन प्राप्त है. यह आधिकारिक सर्टिफिकेशन स्थिरता की गारंटी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण की सुरक्षा के अनुकूल है. ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं. पिछले हफ्ते लगे बोंसिखो इंस्पायर अवार्ड 2026 के अंतर्गत शुगर सिंडिकेट की खास प्रशंसा की गई. 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ दिनों में शुरू होगी. से पूर्व हर साल की तरह कौंजाब की अमातु के कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं. आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए. कटनी का ये सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा. फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते, इसके लिए अमातु के का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है. इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी. गन्ने की पेराई का काम 22 जून से अल्तेओ और त्या कारखानों से शुरू हो रही है, जबकि ओमनीकेन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मध्य पूर्व में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी से स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है. चिंता की बात यह है कि केवल 24 घंटों के अंतर्गत करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई, जिससे ये प्रकोप हाल के सालों के सबसे गंभीर एबोला संकटों में शामिल हो सकता है. स्वास्थ्य एजेंसियां संक्रमण रोकने के लिए निगरानी, जाँच और रोकथाम के प्रयास तेज कर रही है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Radio Musti
5: in the mix.
3: Radio Musti feels a musty
5: in the mix.

0: Dusty. In the mix.
1: Lovely songs happening live on Radio Musty, and we are live from Rosebel Plaisance Mall for the MBC Play launch campaign. And अच्छी बात ये है कि लोग रेडियो सुन सुन कर कहीं से भी चले आ रहे हैं. उन्होंने सुना हाँ रेडियो मस्ती टीम रहने वाली है अप टिल 3:30 PM. भागे भागे चले आए. थैंक यू सो मच. इसको कहते हैं फिडेलिटी, एंड योर फिडेल ऑलवेज टू MBC रेडियो, MBC TV एंड MBC प्ले. यहाँ पर आपके लिए अगर आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ पर भाई डाउनलोड कर सकते हैं MBC प्ले, अगर आज आ नहीं पाते हैं इधर एट रोजबेल प्लेसेंस मॉल, तो आप अपने घर पर ही डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर. आईफोन हो या फिर आईपैड या फिर गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉइड नहीं तो आप हुआवे ऐप गैलरी, एंड्रॉइड TV पर भी आप अवेलेबल हो सकते हैं जितने भी MBC प्ले है. और आपको करना क्या है, जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा MBC प्ले, देन यू क्लिक साइन अप या फिर रजिस्टर, देन आप अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर कीजिएगा. यू लॉग इन टू एक्सेस कंटेंट, साथ में आप सिलेक्ट करके परचेज करेंगे द डिजायर्ड पैकेज. डिजायर्ड पैकेज माने कि वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप पैकेज, जहाँ पर अपने पूरे 104 का जितने भी फीफा वर्ल्ड कप मैचेस हैं आप इनको लाइव फॉलो कर पाएंगे, देख कर पाएंगे. नहीं तो आप लाइव भी नहीं तो आप रिप्ले मोड पर भी देख पाएंगे, एंड जितने हमारे चैनल्स हैं रेडियो चैनल्स या फिर TV चैनल्स आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे. तो यहाँ पर आइएगा, ज़रूर हमारी टीम आपके साथ है. RM2 रेडियो मस्ती टीम, MBC प्ले टीम, अवेकुपाटू जैसे कि इनका स्लोगन ही ऐसा है. तो आप एनी वे एनी टाइम अपने जो फुटबॉल मैचेस हैं देख पाएंगे, एंड ये जो यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन एन MBC प्ले गिफ्ट पैक. जी हाँ, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सक्सेसफुली आपको रजिस्टर करना होगा. यू हैव टू सब्सक्राइब टू MBC प्ले ड्यूरिंग द एंटायर जो कैंपेन है या पीरियड है, एंड ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है, आपका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाता है, एंड यू एंटर इन टू द ड्रो. 6 लकी विनर्स होंगे जिनको मिलेंगे MBC प्ले गिफ्ट पैक, वो भी फीफा वर्ल्ड कप के ख़त्म होने से पहले. तो आपका नाम, आपके नंबर सिलेक्ट किए जाएंगे, एंड लकी ड्रो के बाद यू नेवर नो आपका नंबर निकल जाए. सो मेक इट अ मस्ट, एंड एनी टाइम एनी वे आप लाइव TV देख पाएंगे, एक्सेस टू MBC चैनल्स लाइव थ्रू दिस ऐप, लाइव रेडियो बीट RM1, RM2, कूल FM, एनी MBC रेडियो स्टेशंस लाइव, स्पोर्ट्स जी हाँ जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव जो स्पोर्ट्स कंटेंट्स हैं वो आप देख पाएंगे, या फिर रिप्ले मोड जो कैच अप ऑन प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आपने मिस किया है वो आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे. लोकल कंटेंट्स यानी कि जितने भी मॉरिशन प्रोडक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं वो आप देख पाएंगे. एंड वन प्लेटफॉर्म, ये जो MBC प्ले है, TV, रेडियो, डिजिटल कंटेंट इन ऑल वन प्लेस. तो मेक इट अ मस्ट, यहाँ पर आइएगा, अपने मोबाइल फ़ोन लेकर आइएगा, देखिएगा. यहाँ पर हमारी टीम आपको कहेंगे आपका मोबाइल फ़ोन कंपैटिबल है कि नहीं, या फिर एनी एक्सेस आपको क्या करना चाहिए. तो ये जो कैंपेन है अभी तक चलता रहेगा, कुछ और दिनों तक चलता रहेगा. आपको इतला की जाएगी, डेफिनेटली यू गेट टू नो थ्रू MBC रेडियो TV कहाँ कहाँ पर हमारी जो टीम है MBC प्ले टीम आपकी मदद करने के लिए. सो डू नॉट मिस, बस ₹300 आपको चाहिए, रजिस्टर कीजिएगा. एंड ओनली वन ऑफ है, वन ऑफ माने कि एक ही बारी, नो नीड टू पे हर मंथ, नहीं एक ही बारी आप ₹300 पे करेंगे. सब्सक्राइब कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, विन अ चांस टू विन द लकी ड्रो गिफ्ट जो है MBC प्ले गिफ्ट पैक, क्योंकि MBC प्ले अवेक ऊ पाचू.

0: track and play.
1: RM2 Radio Masti.
2: So well, after plays on small, back to studio. MBC Mocha से हम तो कर रहे हैं आपका स्वागत. ये है आपका अपना RM2 Radio Masti. Well friends, अनीतु शाथी आपके साथ समझाने के लिए कि MBC Play डाउनलोड करके आप किस तरह से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं. And always for you, ये है हमारी पूरी MBC टीम. So चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM with the plug and play, जहाँ पर हम plug and play करने वाले हैं कुछ very beautiful songs आपके लिए. So well, इस संडे को मनाएंगे खास म्यूजिकल आपके नाम. अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 54991294 पर मैं करूंगी आपका इंतजार. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ सोनू निगम. अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए. आई एम विशिंग यू ऑल अ हैप्पी संडे.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, आफ्टर दुआओं के बाद ही तो मिलता है ऐसा संडे जहां पर आप रिलैक्स भी कर पाएं और मौसम भी एकदम मस्त हो, जो इस मौसम में आपके जो भी

प्लान्स हो, गोइंग टू द सी साइड, एंजॉयिंग योर शॉपिंग टाइम, या फिर बस एक लॉन्ग ड्राइव, या फिर घर पर रिलैक्स एंड चिलैक्स, जो भी कर रहे हैं आप, नॉट टू फॉरगेट, हम तो हैं आपके म्यूजिकल हम सफर. मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM. एंड यहाँ पर प्रीतम जी साथ दे रहे हैं आप पीटो से, एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली वाइफ फॉर वर्षा. इस वक्त आप भी अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं घर पर, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम एंड फॉर योर ब्यूटीफुल बेटर हाफ. सो एंजॉय द टाइम, और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और वेल, कहते हैं कल ब्लू बे में आपने बहुत मजे किए, कह रही हैं रोशनी. बिल्कुल जी, बस आपको मिस किया. अभी के लिए आप दे रही हैं साथ, सो बस योर कंपनी मींस अ लॉट. साथ देने के लिए शुक्रिया. हैव अ वंडरफुल टाइम. सात समुंदर पार से जीना जोयश्री आप भी हमारा साथ दे रही हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं. सो विशिंग यू अ वंडरफुल संडे आफ्टरनून. साथ दीजिए हमारा विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. शामिल होता हुआ ये गाना आप सभी के नाम.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musti. Feels a Musti.
2: And in the beautiful voice of Javed Ali, इसी गाने के साथ it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते गाना होगा for Shehnaaz Jogi of Trivijo Gampa. साथ ही आपके friends, आपके family के नाम, wishing you all a wonderful Sunday. साथ ही यहाँ पर गाना for Nana Diwan, Mamu Sachin, Papa Kishan, Papa Bobby, Papa Viraj, coming from Beta Lavish and Beti Ojaswi. So thank you so much guys, आपने इतने प्यार से साथ दिया on RM2 Radio Masti. मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. मेरे बाद आ रहे हैं संजय लेकर कुछ और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए. सो ये है आपका अपना RM2 Radio Masti, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल संडे आउट देयर. ख्याल रखिए अपना, स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार दीना जी के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कौंजियाब स्थित कोविल अम्मा दुके में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर

0: विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम तथा कई सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। साथ ही बगासी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खाद्य सामानों के दामों में कमी आई, जबकि कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़े हैं। सर्दियों के मौसम में गैस वाटर हीटर के इस्तेमाल के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत तरीके से लगाया गया हीटर, हवा के आने जाने की कमी या खराब पाइप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव का कारण बन सकते हैं। खासकर बाथरूम जैसे बंद स्थानों में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का रूप ले सकती है, इसलिए हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल और नियमित जाँच बेहद ज़रूरी है। विदेश में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत के प्रयास जारी है, लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जन समर्थन लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमरीकी मानते हैं कि ये संघर्ष देश के हित में नहीं रहा और इसका असर अर्थव्यवस्था तथा महंगाई पर भी पड़ा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Avec NBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui est disponible au NBC Play à partir des 16 ans pour 300 roupies. Et coupez pour sa package là, 6 ans c'est le fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download NBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. NBC Play avec ou partout.
3: Music, Dr. Gutter.
4: RM2, Radio Musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां जहां जन्नत से मुलाकात हो जहां पूरी हर दुआ हो आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की वाह लिखने वाले ने क्या खूब लिखा और गायक कलाकार के जी ने क्या खूब गाया सबों को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन आशा करते हैं कि जितनी खुशी से हम आप से मिलने का इजहार कर रहे हैं उतनी ही खुश आप भी हैं हमारा साथ पाकर आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन पर चले हमारी आपकी मुलाकात बनी रहेगी 7 बजे तक Wishing you all a very nice listening on Radio Masti.

0: स्वीट हार्ट टू ऑल दोस जो रात का खाना बनाते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर सलाम करना चाहेंगे हम अनीता जी को जो फ्लक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लिखती हैं कुकिंग एंड एंजॉयिंग द नाइस सॉन्ग संजी अ स्वीट हाय आल्सो टू द सिवसरन फैमिली जो फ्लक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आपकी वफादारी के लिए आपके प्यार के लिए
1: RM2 Radio Musti
2: Communiqué depuis ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère paie un fonds public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bisait enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.govamu.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
1: RM2 Radio Musti.
3: Music, Dr. Gutter.
1: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: डेली बात इन द वॉइस ऑफ KK। पिछले रविवार को हम मना रहे थे देश में, हमारे देश में माता दिवस, सो इट पास लाइक दैट। लेकिन 31st में ही को बरसी होती है KK की, अ ग्रेट सिंगर हुम वी लॉस्ट सो अर्ली, जिनको हम यहाँ पर से नमन करते हैं। थैंक यू डियर लिसनर्स टू बी कनेक्टेड। इबादत की बात हो रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं मिर्ज़ा गालिब की वो शेर, ये संग दिलियों की दुनिया है, ये संग दिलों की दुनिया है, संभल कर चलना गालिब, यहाँ पलकों पर बिठाते हैं नज़रों से गिराने के लिए। लेकिन आप सबों ने हमें तो अपने दिल में रखा है, इसीलिए हर शाम, हर संडे की शाम को हमारे साथ जुड़ जाते हैं ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आपकी संडे शाम संजय के साथ, ये है आपका वीकली रेंडेवू। अबे हाय टू अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। प्रीतम भाई जो मापू से हमारे साथ निभा रहे हैं, उनकी ओर से गाना जाता है फॉर लव नंदिता पीतों।

0: गाना फिल्मी हो सकता है लेकिन फिल्मी होने के अलावा ये गाना बहुत ही फील मी है, असर गहरा है।
1: म्यूजिक टकटकाटक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: किसी ने क्या खूब भेजा है अपने मैसेज में कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कारणों के लिए आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया तो उसकी मदद करो, लेकिन अगर प्रभाव से आया तो प्रसन्न होकर उसे गले लगाओ। इन लम्हों को गले लगाने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। These are beautiful moments जो आप रेडियो मस्ती पर बिता रहे हैं अपने ही साथ, अपने परिवारों के साथ। Wishing you all a very nice evening on Radio Masti.

0: काटो काटो
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: That was Shai Ghoshal from the film Kalank. Dear listeners, अगर लता जी के जाने के बाद कोई ऐसी आवाज़ उभरी है बॉलीवुड में जिसमें साक्षात सरस्वती माँ की झलक दिखाई देती हैं, then it is definitely Shai Ghoshal जी. शुक्रिया साथ निभाने के लिए और शुक्रिया आपके numerous messages के लिए. अंजू जी हमारा साथ निभा रही फ्रॉम नोवेल फ्रांस लिखती हैं कि listening to your show, भाईसन Wonderful selection, cooking right now. और हमारे हस्बैंड हमारे साथ किचन में हेल्प कर रहे हैं. वाओ ब्यूटीफुल, हाउ रोमांटिक, हाउ नाइस. आशा करते हैं कि दोनों गीतों को आप मिलकर बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आज खाना तो बहुत ही लाजवाब होने वाला है. थैंक यू. साथ ही साथ नेक्स्ट सॉन्ग गोज़ फॉर कुमार देवी चैन जी और यलेश शाम जी जो सुरीनाम से हमारा साथ निभा रहे हैं. फॉर ऑल दोस जो इस समय रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं.

0: Dr. Gadan.
1: RM2, Radio Musti.
2: किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी सभी के लिए वही नहीं होती है, फर्क इतना होता है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। 5:10 हुए हैं। वेलकम डियर लिसनर्स इन द सेकंड आवर ऑफ तक तक तक संजय के साथ, आपकी संडे शाम सन के साथ। शुक्रिया आपके न्यूमरस मैसेजेस के लिए, ये बताने के लिए हाउ मच यू आर लविंग द सिलेक्शन, हाउ यू आर लविंग काम करते हुए पकाते हुए हमारे साथ रेडियो मस्ती पर, वेलकमिंग यू रोल इन दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक एंड लव। एंड दिस वन गोइंग फॉर सिस्टर गीतिका गंगादेन बालू, जिनका आज जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द होल गंगादेन फैमिली और स्पेशली केमी जी की ओर से।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: कोई और सुने ना सुने, हम आपके दिल की बात सुनने की पूरी कोशिश करते हैं। माला जी जो हमारा साथ निभा रहे हैं फ्रॉम कटरबोन कुकिंग एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, थैंक यू माला जी। और ये मैसेज आया है रोशनी जी की ओर से, जो लिख रही हैं कि उनकी बेटी शिमर उनका साथ दे रही हैं। नहीं, ये है सुचिता जी की ओर से मैसेज। आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें लिखें अपना नाम ज़रूर लिखें। सो दिस वन गोइंग फॉर सुचिता जी और उनकी बेटी शिमर के लिए एंड फॉर द होल सुबग फैमिली। साथ ही साथ द नेक्स्ट वन गोज फॉर द होल जितन फैमिली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड दिस वन यस रोशनी जी हु इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ श्रेया घोषाल और उनको फिल्म सैयारा का गाना बहुत ही पसंद आया।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: म्यूजिक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अगर तुम साथ हो, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है कृष्णी जी की ओर से फ्रॉम कॉम्फू को। लिखती हैं, जय सियाराम भाई जी, बहुत धन्यवाद इन बहुत सारे खूबसूरत गानों के लिए और आपके मीठे मीठे बोलों के लिए। लगता है कि आज बहुत से घरों में बहुत अच्छा खाना पकने वाला है। थैंक्स टू योर सॉन्ग्स एंड थैंक्स टू योर वर्ड्स। कृष्णी जी, आप ही के मैसेज, आप ही का मैसेज इतना खूबसूरत है कि हम क्या कहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग विद सच अमाउंट ऑफ लव। That was Krishni ji from Comfort Call. ये मैसेज आया है, प्लीज संजीव डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग फॉर बिकारी फैमिली फ्रॉम क्वाटर बॉर्न, एंजॉयिंग ऑल द सॉन्ग्स। और ये मैसेज आया है अनिता बिमल जी की ओर से फ्रॉम कोंगोमा, फ्रॉम सुया बियागी जी ऑफ कोंगोमा, कुकिंग एंड एंजॉयिंग द लवली सॉन्ग्स। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी मैसेजेस के लिए। हेलो संजीव, ये हैं करिश्मा फ्रॉम लमारी, डेडिकेट नेक्स्ट वन फॉर समवन वेरी स्पेशल। और ये मैसेज है आस्किंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय फैमिली, पापा सुबी, मामा नीता एंड मी ईशा द डॉटर, फॉर द होल चतुर्धारी फैमिली ऑफ।
3: तुम आए तो हवाओं में एक नशा
2: बियागी रोड।

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: अब ये जैसे एक वीकली रेंडेवू बन गया है, बहुत सारे लोग इसके बारे में हमसे पूछते रहते हैं ड्यूरिंग द वीक कि इस संडे को आप किस फैशन टिप के बारे में बात करने वाले। डियर लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं, वी आर ऑलरेडी इन विंटर एंड मास्टरिंग विंटर फैशन कम्स डाउन टू स्मार्ट लेयरिंग विदाउट बल्क। बिना ये कि आप बल्कि देखें, आप मोटा देखें आप, सो इट्स मिक्सिंग रिच टेक्सचर्स एंड एंकरिंग योर लुक विद अ स्टेटमेंट कोट। यू कैन स्टे परफेक्टली कोजी व्हाइल एलिवेटिंग योर कोल्ड वेदर स्टाइल बाय फोकसिंग ऑन अ फ्यू फंक्शनल प्रिंसिपल्स। और इसे कहते हैं द फ्री लेयर सिस्टम। फर्स्ट अ बेस लेयर वेयर थिन मॉइस्चर विकिंग मटेरियल्स लाइक सिल्क थर्मल्स और मेरिनो वूल टू रिटेन हीट विदाउट स्वेटिंग। ये हुआ पहला बेस लेयर। उसके बाद अ मिड लेयर, एड इंसुलेटिंग कोजी टेक्सचर्स सच एज कश्मीर स्वेटर और अ निटेड वेस्ट टू ट्रैप बॉडी हीट। और फिर उसके उपरांत आउटर लेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड विद अ हाई क्वालिटी वूल ब्लेंड और डाउन कोट। सो दिस इज कंसर्निंग Fashion tip for the winter period.
0: Fashion tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
3: ये हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है।
4: मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ।
3: लकड़ियाँ गीली हैं।
4: आज तो मैं पानी में भी आग लगा सकता हूँ।
3: मुझे बाहों में ले लो, खुद ब खुद आग लग जाएगी।
4: नहीं,
3: देखो मुझे तड़पाओगे ना तो मैं तुम्हें
4: क्या,
3: मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सर्द हवाओं के बीच में इन खूबसूरत गीतों के जरिए थोड़ी सी गर्मी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भी से आप हमारा साथ निभा रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला जी कहती हैं नाइस सॉन्ग संजी, वेरी गुड सिलेक्शन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला जी। आई डोंट नो आप कहां से हमें सुन रही हैं इस समय, बट आप विदेश में, दैट्स फॉर श्योर। नरिता जीतन जी जो इस समय हमारा साथ निभा रहे हैं, आपको भी हमारा सलाम। और स्वीटी जो पाई से अपनी सभी बच्चों के लिए मांग रही हैं, श्वेता योहन एंड इक्वली स्वर्गीय सुरेश बबूलाल जी के।

लिए। सुरेश रूपचंद जी जो इस समय हमारा साथ निभा रही हैं, आपको हमारा सलाम। वीना जगिसाओ जी जो बेबी मुगल से गीतों को पसंद कर रही हैं, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर हर टू ब्रदर्स एंड फॉर द होल एमबीसी टीम। साधना जी रोजिल से रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर द होल डियाल फैमिली। थैंक यू साधना जी। एंड फॉर ऑल दोस वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स राइट नाउ, ये आपके

0: म्यूजिक चकचकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सुबह एक पैगाम लेकर आती हैं और एक हर शाम एक सीख देकर जाती हैं। डियर लिसनर्स, दो घंटे यहाँ पर समाप्त होने को हैं। 6 बजे आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी एक छोटी सी म्यूजिकल बैंड के दरमियाँ। चलते चलते दिस नेक्स्ट वन गोज फॉर अनीता जी, जो फिका फ्लक से हमारा साथ निभा रही हैं, और नीरेश जी के लिए जो कहते हैं वाओ संजी वाओ क्या बात है। अमिता फ्रॉम गुडलैंड्स लिखती हैं, नाइस वेरी नाइस सिलेक्शन, आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दिस वन एज वेल। गोइंग फॉर ऑल दोस जो शाम के 4 बजे से अभी तक बहुत ही ध्यान, बहुत ही लगन, बहुत ही भाव, बहुत ही प्यार के साथ हमारा साथ निभाया।

all those जिनके messages हमने पढ़ा, equally for those जिनके messages हम शामिल नहीं कर पाए, but let me tell you, I'm connected with you for the heart. सभी के सभी गाने

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। कौंजियाब स्थित अम्मातु के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा कि जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय अगले बजट की प्राथमिकताएं रहेंगी। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की

0: खाद्य और कृषि संस्था FAO की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। मॉरिशस में कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2026 के बीच केवल एक वर्ष में इस बीमारी के मामलों में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अब समाचार विस्तार से। कौंजाब स्थित अम्माटू के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम तथा कई सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। साथ ही बगासी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया, जिनमें जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय शामिल है। गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरिशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई गन्ना कटाई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कौंजाब स्थित कोविल अम्माटुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खाद्य सामानों के दामों में कमी आई, जबकि कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: अप्रैल की तुलना में मई महीने में FAO खाद्य मूल्य इंडेक्स में 0.2% की हल्की गिरावट आई है। हालांकि वार्षिक आधार पर इसमें लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की गई। वनस्पति तेलों और दूध से बने उत्पादों की कीमतों में आई गिरावट के कारण ये स्थिरता देखी गई, जबकि दूसरी तरफ अनाज और चीनी की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी आई है। कई प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ साथ ऊर्जा और उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण गेहूँ, मकई और चावल की कीमतें बढ़ी हैं। शक्कर के दामों में सबसे ज्यादा 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि दुनिया के अग्रणी उत्पादक ब्राजील में फसल की स्थिति को लेकर चिंताओं और भारत तथा थाईलैंड में एल नीनो से जुड़े जोखिमों के कारण हुई है। FAO ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, विशेष रूप से होर्मुज जलमार्ग जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर उर्वरक आपूर्ति को बाधित कर सकता है और खाद्य कीमतों पर और दबाव डाल सकता है। भले ही मंडियों को लचीला माना जा रहा है, इसके बावजूद संगठन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहा है।
0: जैसा कि हम बता रहे थे, गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरिशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई गन्ना कटाई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कौंजाब स्थित कोविल अम्माटुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। और इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और वहां मौजूद डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया, जिनमें जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय शामिल है। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: हर साल जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान गन्ने की कटनी के आरंभ होने से पूर्व कौंजाबली स्थित अम्माटुके कोविल में एक विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी वहां उपस्थित अच्छी फसल के लिए अम्मा का आशीष प्राप्त करने गए। इस तरह

0: अम्मा तुके के प्रति भक्ति और साथ में उन्हें आभार प्रकट करने के लिए एक का पहला गन्ना अर्पित किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नौजवानों को कृषि में संलग्न होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते खेतिहरों को दी जा रही सुविधाएं की याद दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बांका से रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
1: Si nous sommes capables de générer à peu près 500 gigawatts d'électricité par l'air d'ici 2032, à partir de Bacas et de déchets, ça pourrait représenter à peu près 20% de nos réseaux électriques. Plus on produit d'électricité par l'air, moins on peut bien produire pétrolier, moins ça pour nous. Ce qui fait l'initiative, et me saluer, c'est l'initiative Bolches Biomass. Et bien, encourage-nous à produire l'électricité à partir de ce qu'on peut voir, ce qu'on appelle wood chips, et aussi des autres sources d'énergie renouvelable qui peuvent développer l'énergie solaire. Là aussi, je vais donner beaucoup d'incentives, ce qui me gagne l'impression, je ne peux pas connaître. Et prenez en cours, là, vous trouvez. Vous êtes créé Maurice Durable. L'une récit arrive 23,4% énergie renouvelable dans Maurice. 23,4%, il y a presque un corps. Presque 25%. Mais en 2014 et 2024 qui l'année, Maurice et Durand, alors, au lieu de progresser, nous régler, disons nous régler là. Aujourd'hui, pourcentage énergie renouvelable, les moins que 17%.
0: प्रधानमंत्री ने भावी बजट संबंधी प्रमुख पहलुओं को उजागर किया।
1: Responsabilité. Pas au bout de vie populaire, vous êtes respect, là. Solidarité, efficacité économique, mais avec justice sociale. Justice sociale veut dire même des gens qui sont en difficulté, vous êtes continué de tout parti socialiste faire ça. L'objectif, c'est renforcer l'économie populaire. Retournons, quand vous êtes renforcé. Assurer qu'il nous continue à gagner croissance et pour que nous réussissions seulement. Et dans des conditions.
0: हर साल सवन तमिल बेनेवोलेंट सोसाइटी और ओमनिकेन की ओर से इस तरह की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इस समारोह से गन्ने की कटनी के सीजन का शुभारंभ हुआ।
2: सर्दियों के मौसम में गैस वाटर हीटर के इस्तेमाल के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत तरीके से लगाया गया हीटर, हवा के आने जाने की कमी या खराब पाइप कार्बन मोनोक्साइड गैस के रिसाव का कारण बन सकती है। खासकर बाथरूम जैसे बंद स्थानों में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल और नियमित जाँच बेहद ज़रूरी है। बेहतर स्वास्थ्य की राह अक्सर हमारी परंपराओं और जीवन शैली से होकर गुजरती है। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान के इंडियोलॉजी विभाग ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस दौरान आयुर्वेदिक पाक कला और आहार विज्ञान पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही इंडियोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज़लेटर के दूसरे संस्करण की भी लॉन्चिंग की गई और कार्यक्रम के में मौजूद विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया। और मध्यपुर में कई महीनों से चल रहे युद्ध के बावजूद मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति यानी जीडीपी में कमी और आर्थिक विकास में सुधार के पूर्वानुमान है। ज्यादा जानकारी विधिमा सिबुरन के साथ।
3: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. It will still be above 4.0% at the end of 2026, even if the conflict continues up to 6 months.
4: मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास में सुधार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के ये मुख्य पूर्वानुमान है। महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9% होने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर 2.8% से बढ़कर 3.8% होने का अनुमान है। ये ऐसे परिदृश्य हैं जो परिवारों को कुछ राहत दे सकते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
5: Le pouvoir d'achat pourra sans doute se stabiliser, notamment autour des...

0: अर्थशास्त्री मनीषा दुकुनी बताती हैं, निश्चित रूप से खरीद शक्ति में स्थिरता आएगी, खासकर जरूरतमंद पैदावारों को लेकर, चाहे खाद्य हो, परिवहन हो या बिजली। कंपनियों के लिए 2026 की तुलना में 2027 में अधिक वृद्धि होगी।
1: डिमांड इंटीरियर की सरा पोटेंशियलमेंट बहुत प्लू डायनामिक के ça ne l'est aujourd'hui parce que on est quand même dans une situation où c'est beaucoup moins et un environnement macroéconomique qui sera potentiellement beaucoup plus prévisible.
0: इन उत्साहजनक संभावनाओं के बावजूद अफ्रीकी विकास बैंक ने रेखांकित किया है कि मॉरिशस अभी भी कुछ आर्थिक असंतुलन का सामना कर रहा है। देश में राजकोषीय घाटे बने रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि देश का खर्च उसकी आय से अधिक रहेगा। बजट डेफिसिट में ये अनुमान है कि हल्की सी बेहतर स्थिति होगी जो बजट से शुरू होगी, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। ऋण बहुत है और फिस्कल कंसोलिडेशन से हम ऋण को कम कर सकते हैं।
1: De dette assez haut, donc avec la consolidation fiscale, on va aussi potentiellement pouvoir maintenir le cap sur la diminution de notre dette.
0: रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि आयात अभी भी निर्यात की तुलना में अधिक बना हुआ है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। हमारे ट्रेड बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से संबंधित है। लंबी अवधि में कीमत कम हो रही है, जिससे करंट अकाउंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी घाटा कम होगा। दूसरी ओर पर्यटन और वित्तीय सेक्टर तथा आईसीटी सेक्टर से निर्यात से आय मिल रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकता है।
2: Continue à apporter pas mal de export earnings, donc de revenus. Ça va contribuer aussi à réduire le current account deficit.
0: रिपोर्ट में मॉरिशस को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अफ्रीकी देशों के बीच एक रोल मॉडल के रूप में भी उद्धृत किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने विशेष रूप से टैक्स और अन्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की देश की क्षमता और साथ ही इसके वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रमुखता से सामने रखा है।
3: ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करना कई छात्रों को बेहद पसंद है, लेकिन इसके लिए या अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला की प्रक्रिया क्या है या वहां पर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से संबंधित रिपोर्ट क्या है, इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट अदिति अवतार के साथ।
4: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa
5: ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से डिग्री प्राप्त करना मूल्यवान माना जाता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में इसका सदुपयोग कहाँ किया जा सकता है। निवास और नागरिकता नियोजन में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था हेनली एंड पार्टनर्स के शोध से यही बात सामने आती है। रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि परिवार अक्सर अपने बच्चों को शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके अनुसार वास्तविक रणनीतिक लाभ दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में करियर बनाने के अवसर में निहित है। देशों का मूल्यांकन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें आय क्षमता, जीवन की गुणवत्ता, उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर और उच्च किस्म की शिक्षा शामिल है। ये सभी कारक मिलकर एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं जिस पर कोई भी विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए ध्यान नहीं देता, यानी किस देश में विश्व स्तरीय शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आश्वासन देती है। रैंकिंग में शीर्ष 15 देशों की पहचान की गई है। स्थिर आर्थिक वातावरण, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली और उत्कृष्ट करियर संभावनाओं, विशेष रूप से निजी बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के कारण स्विट्जरलैंड 100 में से 86 अंकों के साथ सबसे प्रथम स्थान पर है। सिंगापुर एशियाई पूंजी प्रवाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को जोड़ने वाले रणनीतिक केंद्र के रूप में दूसरे स्थान पर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उच्च आय क्षमता और उत्कृष्ट रोजगार के अवसर मिलते हैं। ये अग्रणी विश्वविद्यालयों, वैश्विक वित्तीय केंद्रों और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय संकेंद्रण को दर्शाता है। कैनेडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध रोजगार बाजार और

0: विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के समर्थन के कारण पांचवें स्थान पर हैं। अवसरों से भरपूर अन्य गंतव्यों में ऑस्ट्रेलिया शामिल है जो यूरोपीय संघ का प्रवेश द्वार है। संयुक्त अरब अमीरात जो धन कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रमुख विश्व केंद्र माना जाता है और न्यूजीलैंड जिसे अपनी क्षमता प्रणाली और जीवन की गुणवत्ता के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि आय का वैश्विक वितरण दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की 80% से ज्यादा आय जन्म के समय निर्धारित परिस्थितियों मुख्य रूप से उस देश से निर्धारित होती है जिसमें वो रहता है।
1: विदेश में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत के प्रयास जारी है लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जन समर्थन लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और कई सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमरीकी मानते हैं कि ये संघर्ष देश के हित में नहीं रहा और इसका असर अर्थव्यवस्था तथा महंगाई पर भी पड़ा है। मध्य अफ्रीका में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है और चिंता की बात यह है कि केवल 24 घंटों में करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब रजनी बीकर के साथ मौसम का हाल सुनते हैं।
2: मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मौसम हवादार ही है और हमारे इलाके पर ठंड हवा की लहर चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश होगी मुख्य रूप से ऊंचाइयों पर। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। धीरे धीरे कल से ये कमजोर होने लगेगा। दूर समुद्र में और पश्चिमी दक्षिणी एवं पूर्वी लगुनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

ऋषि के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे अब तक पहुंचाने में हमें फिजान और मोहसिन का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रिश्ते आनंद लेन मौला शो में, रिश्ते आनंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 years old के श्री सुभाष चंद्र चौधरी, श्री सुभाष चंद्र चौधरी जो धर्म नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर ऋषि आनंद लेन मौला शो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा में, भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई, उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती बिंदु भरत के घर भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खांबा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। जेबेरोड रोजबेल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माला वीरापेन पैदाइशी नाम कानाई और जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी

0: कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रीतम वीरापन के घर शबेर रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 एएम। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Avec NBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui peut disponible au NBC Play à partir des 16 hein, pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents fois. Ou pour capable suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download NBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. NBC Play avec ou partout.
3: Music, Tak Tak Tak.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 6:25 जब हम छोटे थे, जब हम टीनेजर थे, तो ये था वो समय जब हर शाम को संध्या प्रार्थना की जाती थी, जब हर घर में प्रभु का नाम लिया जाता था। समो को नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द लास्ट आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ। आई डू होप यू लव द फर्स्ट 2 आवर्स। अब जो शेष 30 मिनट बाकी हैं, आई डू होप कि ये भी आपको पसंद आएंगे।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: इस समय अनुषा जी हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और अनुषा जी लिखते हैं, हैट्स ऑफ टू यू संजीव फॉर सच अ ग्रेट प्रोग्राम, सच ग्रेट सॉन्ग्स। थैंक यू अनुषा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यू एंड फ्रॉम ऑल द लिसनर्स जो विदेश से, यूके से, यूरोप से हमारा साथ निभाते हैं। आप सबों को हम सलाम करते हैं। Celebrating Mama's Day at Grandma's place. Dedicating next song for Mama Sarita, Anita, Jani, Shobha, Papa Mukesh.

सुरन मनोज प्रीतम मामी लक्ष्मी भाई सोयम योवान बेटी खैरा बेटा प्रयान सिस्टर मनीषा फ्रॉम क्रिश टी निकेत सिंह ऑफ रोजबेल साथ ही साथ यही गाना जाता है फॉर डियर पूर फैमिली ऑफ इसका दिए ओपू फैमिली ऑफ रोज हिल ऑल एंजॉइंग दिस संडे इवनिंग साथ में

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: And that was taken from the film Border 2. Border 2 से पहले हमने हमें फिल्म धुरंधर 1 धुरंधर 2 देखने का अवसर प्राप्त हुआ. Two beautiful, three great films. और इसी बात पर ये quotation हो जाए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है. जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए. थैंक यू रेशमा जी आपके मैसेज के लिए. थैंक यू राधा जी जो विदेश से हमारा साथ निभा रही हैं. हर हर महादेव टू ऑल आवर लिसनर्स फ्रॉम कनाडा. एंड गोइंग स्पेशली फॉर नूर राधा जी.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।

नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: Angel Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार मॉरिशस, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती और मैं हूं आपका दोस्त निखिल। जून का पहला संडे है भाई, नया महीना नए इरादे, लेकिन वही दिल से निकली हुई आपके लिए कहानियां और आपके फेवरेट बॉलीवुड हिट्स। तो चाहे आप डिनर कर रहे हो, चाय पी रहे हो या स्टीयरिंग व्हील पर हो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि ये बॉलीवुड सिज़ला खास आपके नाम।
3: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

0: avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui est disponible au MBC Play à partir des 5 ans pour 10-300 roupies et coupé pour sa package là 6 ans c'est le fois. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: Bollywood Sizzler.
2: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: जी हाँ, जून का महीना है, नया महीना है दोस्तों, नए वादे होंगे, कुछ पुराने वादे निभाने भी होंगे, बस आप अपने आप पर ज्यादा सख्ती मत दिखाइए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा हंसिए और थोड़ा हमारे साथ गाइए.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: मुझे हमेशा ये बात काफी अजीब लगती है. कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं रहते, वो लोग बन जाते हैं, जगह बन जाते हैं, वो पुरानी डायरीज बन जाते हैं, कभी कभी फेसबुक मेमोरीज बन जाते हैं. एक धुन और हम सालों पीछे चले जाते हैं कि जब ये गाना आया था, जब मैं ये गाना सुन रहा था या गा रहा था या गुनगुना रहा था तो ये हुआ था, मैं ऐसा था. शायद इसीलिए बॉलीवुड मेरे लिए इतना खास है, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी को बैकग्राउंड स्कोर दिया है भाई. और अगर आप भी हमें बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर अभी क्या चल रहा है, देन 5499-1294 पर रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार, ताकि हमारे दरमियान ये जो पैगाम, ये इश्क है, इसका बयां हो सके.

0: listening to Radio Masti. Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: वेलकम बैक दोस्तों, बॉलीवुड सिज़ल का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है यहाँ पर RM2 रेडियो मस्ती पर, और मैं हूँ आपका साथी निखिल। जून के इस पहले संडे की रात में उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे, थोड़ा गा लिया होगा हमारे साथ, और शायद किसी अपने को याद भी कर लिया होगा। अगले एक घंटे में और भी रिक्वेस्ट

और भी फरमाइशें होंगी, आपके मैसेजेस होंगे और वो गाने दो जो दिल के पुराने कमरों की खिड़कियां खोल देते हैं। ऐसे कुछ चुनिंदा गाने आपके लिए चुन चुन कर लाया हूं। अगर आपके पास भी कुछ सजेशन, कुछ फरमाइश है, देन 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर फॉर टुनाइट। आप मैसेज भेजिए, बस चुपचाप सुनते रहिए, बस आप कहीं मत जाइए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, मैंने आपसे जैसे ही कहा कि आप हमें कुछ मैसेजेस भेजो, अपना प्यार भेजो, आपने तो मैसेजेस की बौछार लगा दी। जी हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बॉलीवुड सिलसिले का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है, अजनबी लोग, अजनबी कहानियाँ, अलग अलग रिक्वेस्ट, आपकी फरमाइशें, लेकिन जज्बात बहुत मिलते जुलते। चलते देखते हैं आज की रात दिलों से क्या क्या पैगाम आए हैं। ये पहला मैसेज फ्रॉम रोशनी जी फ्रॉम कैथरबोर्न, लवली सॉन्ग्स, थैंक यू फॉर तुम हो तो क्या बात। मे आई रिक्वेस्ट द सॉन्ग लाल इश्क फ्रॉम द मूवी रामलीला प्लीज। जी हाँ, आपके लिए चला देंगे रोशनी जी।

और राधा जी ने हमको मैसेज भेजा है फ्रॉम कनाडा. सो नाइस टू हियर योर लवली वॉइस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू वेरी मच. इफ पॉसिबल प्लीज प्ले दिल ने दिल से पुकारा. जी हाँ, आपके दिल ने पुकारा और हम ना चलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो दैट गोज आउट टू योर फैमिली इन कनाडा, टू इन मॉरिशस, टू myself and to all the RM2 listeners. Thank you. Har Har Mahadev. Next message aaya hai, pad leta hu. Namaste Nikhil ji, aap kaise hain? Bahut hi pyare song hamesha ki tarah. Please next song meri behan Shobha Anuradha Lakshmi aapke liye, sabhi radio masti ki team ke liye, aur aapko bonkugar Anita फ्लिक ऑन फ्लैक्सी. जी हाँ अनिता जी, थैंक यू वेरी मच. ये गाना हम करेंगे आपके और आपके अपनों के नाम. The next message is another. This one is Anusha from Puerto Cadenye. Nice song selection. Thank you. I dedicate the next song for my husband Nitish Bhagwan and all the Etwaria and Bhagwan family. जी हाँ, कर देंगे. आपके नाम ही तो ये शो है, आपके नाम ही गाने करने वाले हैं. और ये अगला गाना हम करेंगे फॉर अ स्पेशल ओकेजन. जी हाँ, just dedicating the next song for Viraj Boida, wedding anniversary today. Wish from Kevin, Kiran Babu and all the Boida family. आपका मैसेज कट गया. अगर और भी नाम है तो आप ऐड कर लेना, हमें तो नहीं दिख रहे, लेकिन आपको बोलेंगे, विराज जी को बोलेंगे a very very very happy wedding anniversary. ये जो अगला गाना हम करेंगे वो खास आपके नाम.

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने गेस कर ही लिया होगा, दिस इज दिल ने दिल को पुकारा इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो फ्रॉम कहो ना प्यार है। और ये स्पेशल स्पेशल रिक्वेस्ट आया है फ्रॉम कनाडा, राधा जी के लिए और आपके अपनों के लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है हमको तो आपको बता दें, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और चल रहा है हमारा बॉलीवुड सिज़लर। अभी इस सिज़लर के बीच में एक ऐसा रिक्वेस्ट आया है जो मुझको सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, रोशनी जी का रिक्वेस्ट, लाल इश्क फ्रॉम द मूवी रामलीला, उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी हाँ, मेरा ये समझना है कि दुनिया को बदलने का तरीका ना बहुत सिंपल है, थोड़ा ज़्यादा सब्र, थोड़ा ज्यादा मेहरबानी, किसी से दिल से पूछना तुम ठीक हो ना। प्यार हमेशा बड़े बड़े जेस्चर्स में नहीं होता, गिफ्ट्स में नहीं होता, कभी कभी वो रोज के छोटे छोटे फैसलों में होता है। और इस हाले दिन को बयां करने के लिए अरिजीत सिंह की आवाज से बढ़कर और क्या हो सकता है।
0: To read.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जहाँ कुछ लोग संडे को आराम करते हैं और कुछ लोग संडे को दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, रेडियो वाले, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स, डिलीवरी हीरोज और वो सब जो अभी ड्यूटी पर हैं, आपके लिए हम करेंगे ये गाना।

ये गाना खासकर राजी फ्रॉम सैन पियर की तरफ से टू अ स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पाल्मा का तो बोन एंड फॉर हर फैमिली विशिंग हर अ सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, दैट वाज इन द वॉइस ऑफ चित्रा, तुम बिन. ये कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हम आधा नहीं चला पाते, इनको पूरा चलाना पड़ता है. एंड दिस वाज रिक्वेस्ट फ्रॉम राजीव फ्रॉम सैपिया. थैंक यू वेरी मच राजीव भाई. एंड द नेक्स्ट वन इज आल्सो अ लवली रिक्वेस्ट. मैं देख लूँ. जी हाँ, फ्रॉम करिश्मा टू एक रूठे हुए जान रवि, उनके लिए मांगा है लाल सिंह चड्ढा का ये अगला गाना. और ये हम करना चाहेंगे आप तमाम लिसनर्स के लिए, स्पेशली टू ऑल दोज हु आर इन लव टुनाइट.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ का सीज़न होता है. काम का, कभी इंतज़ार का, कभी दोस्ती की, कभी प्यार का. शायद ये जून का पहला संडे हमें ये याद दिलाने आया है कि हर मौसम गुजरता तो है, तो अगर वक्त अच्छा है तो शुक्र अदा ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुश्किल है तो यकीन रखिए ये भी गुजर ही जाएगा. जैसे कि हमारा ये शो अभी गुजर गया है. यहाँ इसी के साथ दोस्तों, बॉलीवुड सिज़्ले को देना होगा इजाज़त. कल से एक नया हफ्ता शुरू होगा, लेकिन आज की रात की ये मुस्कुराहट साथ ले जाइएगा. मैं हूं निखिल, दुआ करता हूँ कि आपका जून प्यार और हिम्मत से भरा रहे. गुड वाइब्स, गुड पीपल एंड गुड म्यूजिक. शुभरात्रि, ख्याल रखिए और दिल से जीते रहिए.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का RM2 पर Late Night Grooves और आज का ये सफर और हमें मिलता है ये अवसर कि आपके साथ थोड़ी सी बातें करें, थोड़ी सी यादों को जगाएं और ढेर सारा म्यूजिक शामिल कर दें आपकी जिंदगी में। तो चाय का कप हो या सफर का रास्ता, बस साथ बनाए रखिए। मैं आपके साथ चलने वाला हूँ टिल मिडनाइट।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits music only.
3: Feels a musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: कभी कभी जिंदगी हमें वही देती है जो हमें चाहिए होता है, ना कि जो हम मांग रहे होते हैं. डिफरेंस है ना. हर मोड़ पर सब जवाब मिल जाएंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर मोड़ कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है. इसी पॉजिटिव सोच के साथ म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा टिल मिडनाइट.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The lights go black. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: प्यार हमेशा बड़े वादों में नहीं होता, कभी एक मैसेज में, एक मुस्कान में भी छुपा होता है। किसी का ख्याल रखना भी मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज है। अगर आप भी किसी को याद कर रहे हैं तो ये अगला गाना उनके नाम कर लेते हैं, क्यों नहीं। म्यूजिक के साथ रहिए, हमें अपना साथ देते जाइए।

भाई कुछ लोगों की आदत होती है बातें करने की और कुछ लोगों का सहारा होता है म्यूजिक। जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो सुर और धुन में दिल की बात कही जा सकती है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और म्यूजिक को अपना जादू फैलाने दीजिए।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
5: भाई देखते देखते जो रात का पहला घंटा है, जो प्रोग्राम का पहला घंटा था, वो पूरा हो गया है। उम्मीद है कि गाने और बातें आपको पसंद आ रही होंगी। अब अगले घंटे में और भी खूबसूरत पल आपका इंतजार कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, म्यूजिक का सफर जारी है यहीं इसी स्टेशन पर RM2, हमेशा आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2, Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं और शायद इसीलिए सबसे खास होता है। जो दोस्त खुशी में साथ हंसे और मुश्किल में साथ खड़े रहें, उसे संभाल के रखिए। आज का ये गाना उन सभी के लिए जो एक साथ होकर जिंदगी के हर लम्हे को दिल खोल कर जीते हैं, जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: देखिए साहब, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का मौका जरूर देती है। जो कल नहीं हुआ वो कल हो सकता है, क्यों नहीं, बस कोशिश और उम्मीद का साथ मत छोड़िए। अब सुनिए एक गाना जो कि आपका साथ चाहेगा निभा।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2, Radio Musty.
1: Pop the lights, go black. Boom.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a Musty.
2: खुश रहने के लिए बहुत बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी एक अच्छा गाना, कभी किसी अपनी की आवाज, और कभी किसी का ये पूछ लेना कि सब ठीक है ना। बस हमारी भी कोशिश ये रहती है कि गानों के जरिए, प्रोग्राम के जरिए आपका साथ देते जाएं। और कभी बस एक सुकून भरी रात ही काफ़ी होती है, कुछ घंटे ही काफ़ी होते हैं कि दिल भर जाता है खुशी से। इस खुशी को महसूस करते रहिए और म्यूजिक का साथ देते जाइए।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: भाई हर रिश्ता समय मांगता है और सबसे ज्यादा मांगता है समझ। कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी किसी के लिए बहुत होता है। अपनों को वक्त दीजिए, क्योंकि यादें ही हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। अब वक्त है एक और खूबसूरत गाने का।
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
4: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
4: रेडियो मस्ती द लेटेस्ट न्यूज।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: वही रात का दूसरा पड़ाव भी बहुत प्यारा रहा और हम पहुंच रहे हैं आखिरी घंटे की तरफ। अब यकीन मानिए अभी बहुत सारे खूबसूरत गाने बाकी हैं, ये घंटे का सफ़र बाकी है, तो साथ बना के रखिए और रात को और भी ख़ास बनाने के लिए आइए। एक वादा हम करते हैं और एक वादा आप, साथ में रहने का इन द म्यूज़िक वर्ल्ड।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Musti
3: Hit Music Only
4: Radio Musti Feels a Musti

0: RM2.
1: Radio Musti. Feels a Musti.
2: रात का ये वक्त सपने देखने वालों का होता है। कुछ सपने नींद में आते हैं और कुछ खुली आंखों से देखे जाते हैं। जो भी सपना हो उसे पूरा करने का हौसला कभी मत छोड़िए। तो हौसले को बढ़ाओ और वॉल्यूम भी।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: कभी वक्त मिले तो रुक कर सोचिए कि जिंदगी ने आपको कितना कुछ दिया है। छोटी छोटी खुशियाँ, अपने लोग और नए दिन की उम्मीद। भाई धन्यवाद कहना भी एक खूबसूरत आदत है। इसी एहसास के साथ म्यूजिक का सफर जारी है।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: दुनिया को खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाना, ये तो ठीक नहीं है। अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपनी मुस्कान का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तब दुनिया भी थोड़ी और खुश मिजाज लगती है, रोशन लगती है। और ये गाने भी तो चेहरे पर एक मुस्कान

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: रात के सुकून भरे लम्हे में शायद आज का दिन याद आ रहा होगा। जो अच्छा हुआ उसे संभाल कर रखिए, और जो पसंद नहीं आया उससे क्यों ना एक सबक लेते हैं। कल एक नया दिन होगा और नया मौका कुछ नया करने का, अलग अंदाज से।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: So dear listeners, अब बाय-बाय कहने का वक्त हो गया है क्योंकि आज का सफर, ये जो 3 घंटे का सफर था वो यहीं ख़त्म हो रहा है। बस अगले गाने के साथ, और यही उम्मीद है कि म्यूजिक और बातों ने आपका साथ अच्छा निभाया होगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, और हर दिन एक नई कोशिश, एक नई उम्मीद। इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर जल्दी मिलते हैं। ध्यान रखिए, नमस्कार।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
3: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Must.

for him too. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: FM2 Radio Masti.
1: Hit music only.
2: Radio Masti feels a Masti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: वेलकम टू RM2। आता है मुझको
1: प्यार में जल जाना। इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
2: चेक दिस आउट।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।